सहज सुफाय साखा तीन नवारियां एक शब्द लिवलाय अमृत फल हर एक है आपे देखवाय मनमुख उबे सुख गए ना फल तिन्ना शाम तिन्ना पास ना बैसी है ओना घर ना ग्राम कटिय है तह नित जाली है ओना शब्द ना नाम हुक्मे कर्म कमावणे पै किरत फराव हुक्मे दर्शन देखना जह भी जह तह जाऊ हुक्मे हर हर मन वसै हुक्मे सच समाव हुक्म ना जान है बपड़े भूले फिर है गवार मन हट कर्म कमा।

उदार सब नदरी कर्म कमावंदे नदरी बाहर ना कोए जैसी नदर कर देखे सच्चा कैसा ही को होए नानक नाम वडाइया कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम त्याई है मनमुख बूझ ना पाए गुरमुख सदा मुख उजले हर वस्या मन आए सहजे ही सुख पाई है।

सदा सुहाग सुहागणी जे चलह सतगुर पाए सदा फिर नेह चल पाईए ना ओ मरे ना जाए शब्द मिली ना विछुड़े फिर कै अंक समाए हर निर्मल अत उजला बिन गुर पाया ना जाए पाठ पढ़े ना बूझई भेखी भरम पलाए गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए माया मोह चकाया गुरमती सहज सुपाई बिन शब्द जग दुखिया फिर मन मुखा नु गई खाए शब्दे नाम त्याई है शब्दे सच समाए माया भूले सिद्ध फिर है समाध ना लगे सुपाई तीने लो व्यापत है अधिक रही लपटाए बिन गुर मुक्त ना पाई है ना दुगदा माया जाए माया किसनो आखिए क्या माया कर्म कमाए दुख सुख एहो जियो बद है हम मैं कर्म कमाए बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हम मैं जाए बिन प्रीति भगत ना हो गई बिन शब्द थाए ना पाए शब्दे हम मैं मारिए माया का भ्रम जाए नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सहज सुपाए बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए भगत वश्चल हर मन वसया सहज मिलिया प्रभ सोए नानक शब्दे हर सलाहिए कर्म परापत होए श्री राग महला तीजा माया मोह मेरे प्रभ कीना आपे परम पलाए।

नाम जपहु सुख होए, गुर पूरा सालाहिय सहज मिले प्रभ सोई रहाउ। परम गया पहु भागिया हर चरणी चित लाई, गुरमुख शब्द कमाई हर वसै मन आई, कर महल सच समाई।

उत कर्म धर्म किस संयम ना पड़े दूजा भाव ना जाने सतगुर भेट है निर्मल हुआ अन दिन नाम बखाने एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर ना जाने खत दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पलाए

पंडित पड़ पड़ वाद बखान है बिन गुर परम पलाय लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाई जां नाउ चेतै तां गत पाई जां सतगुर मेल मलाय सत संगत मह नाम हर उपजै जां सतगुर मिलै सुपाई मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाई सत बलिहारी गुर अपने बिटो जे हर सीती चित लाई सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर सीती रंग राता प्रभ निकट बसै सबना घट अंतर।

बिन गुर पाया न जाय, पल पल पंडित जोत की थके, भेखी परम पलाय, गुर भेटे सहज पाया, अपनी कृपा करे रजाय। भाई रे गुर बिन सहज न होए, शब्द ही ते सहज उपजे, हर पाया सच सोई रहाओ, सहजे गाव्या थाई पवे, बिन सहजे कथनी बाद, सहजे ही भगत उपजे, सहज प्यार बैराग, सहजे ही ते सुख शांत होए, बिन सहजे जीवन बाद, सहज सलाही सदा सदा, सहज समाद लगाई, सहजे ही गुण उचरै।

पाईऐ त्रै गुण भरम भलाए पढ़िया गुणिय क्या कथिय जा मुंडो हो कुथा जाए चौथे पद मह सहज है

सहज मलाइसी शब्द मलावा हुई। बिन सहज सब अंध है माया मोह गुबार, सहज ही सूझी पई सच्चा शब्द अपार। आपे बख्श मलायन पूरे गुर करतार, सहजे अधिष्ट पछाणिय निरप

त्यों रहना। गुर कै शब्द जीवत मरे, गुरमुख पव जल तरना। वड्डे भाग नाउ पाईए, गुरमत शब्द सुहाई। आपे मन वसिया प्रभ करता, सहजे रहिया समाई। इक ना मन मुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया।

ते सच स्यों अपनी कृपा करे मलाए आपे करे कराए आपे इकना सुतिया दे जगाए आपे मेल मलाएंदा नानक शब्द समाए श्री राग महला तीजा सतगुर सेवे मन निर्मला भये पवित्र शरीर मन आनंद सदा सुख पाया भेटिया गहर गंभीर सच्ची संगत बैसना।

क्या शब्द पाती उपजय सच्चे सच्चा नाम जिन्नी हम मैं मार पछाणिया हम तिन बलिहार जाऊं मन मुख सच ना।

राम पछाणिया गुरमति निज घर वास सच वेखण सच बोलना तन मन सच्चा हुए सच्ची साखी उपदेश सच।

जग जल ता देख कै भज पए सतगुर सरना सतगुर सच दड़ाया सदा सच संयम रहना सतगुर सच्चा है बोहिथा शब्दे पव जल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे पाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार करन तिन्ना निज कर वासा पाया सच्चे महल रहन नानक भगत सुखिये सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवां जा को मुश्किल अत बने टोई कोए ना दे लागू होए दुश्मना साक पे भज खले सबो भजे आसरा चुके सब असराऊ केते आवे उस पार ब्रह्म।

बला नांग भूख की पीर दमड़ा पल है ना पवे ना को देवे तीर स्वार्थ स्वाहो ना को करे ना किश होवे काज कित आवे उस पार ब्रह्म ताने चल होवे राज जा को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग ग्रिस्त कटम पलिटिया कदे

ब्रह्म तन मन शीतल होए, काम क्रोध मोह वस किया, किरपन लोभ प्यार, चारे किलविख उन अग किए, हुआ असुर संगार, पोथी गीत कवित किश कदे न करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म ता निमुख सिमरत तरिया, शास्त्र सिमरत वेद चार, मोखागर बिचरे तपे तपीसर जोगिया, तीरथ गमन करे खट कर्मा ते दुगणे, पूजा करता नाए रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए, राज मिलख सिकदारिया रस भोगण बिसथार, बाग सुहावे सोहणे चलै हुक्म अफार, रंग तमाशे बहु विधि चाए लग रहिया, चेतना आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जून गया, बहुत तनाड अचारवंत सोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत पाइया साजन संग परीत, लश्कर तरकस बंद बंद जियो जियो सगली कीत, चेतना आयो पार ब्रह्म ता खड़ रसातल दीत, काया रोग ना छिदर किस ना किस काड़ा सोग, मृतना आवी चित तिस अहनस भोगै भोग, सब किश कीतो ने अपना जिए ना संक धरिया, चेतना आयो पार ब्रह्म जम कंकर वस परिया, कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवै साधु संग, ज्यों ज्यों ओह वधाई है त्यों त्यों हर स्यों रंग, दोहां सिरियां का खसम आप

मेरा गुण अवगन ना बिचारिया, रब अपना बिरद संवारिया, कंठ लाए कह रखियोन, लगे ना तत्ती वाऊ जियो, मैं मन तन प्रभु ते आया, जिए इच्छे अड़ा फल पाया, साहा पातशाह सिर कसम तू, जप नानक जीवै नाउ जियो, तुदे आपे आप उपाया, दूजा खेल कर दिखलाया, सब सचो सच वर्तदा, जिस भावै तिसै बुझाए जियो, गुर प्रसादी पाया, तिथै माया मोह चकाया, कृपा करकै अपनी आपे लए समाए जियो, गोपी नै गोवालिया, तुदे आपे गोए उठा लिया, हुक्मी भांडे साजिया, तू आपे पन सवार जियो, जिन सतगुर स्यों चित लाया, तिनी दूजा पाहु चुकाया, निर्मल जोत तिन प्राणिया, ओए चले जन्म सवार जियो, तेरिया सदा सदा चंगे आईया, मैं रात देह बड़े आईया, अन मंगिया दान देवना, कहो नानक सच संभाल जियो, श्री राग महला पंजवा, पै पाए मनाई सोए जियो, सतगुर पुरख मलाया, तिस जेवड़े अवन ना कोए जियो, रहाओ गुसाई मेहंडा इठड़ा, अम अबे थाम मिठड़ा, भैन भाई सब सजना, तुद जेहा ना ही कोए जियो, तेरा हुक्मे सामने आया, मैं सत का हल जो आया, नाऊ बीजन लगा आस कर, हर बोहल बख्श जमाए जियो, हाँ गुर मिले एक पछाणदा, दुइया कागल चेतना जानदा, हर इक तै कारै लायोन, ज्यों भावै तिवें नभाए जियो, तुसी भोगे हो पुंचो हो भाई हो, गुर दी बाण कवाए पैनाइयो, हों हो आ माहर पिंड दा, बाने आंदे पांज शरीक जियो, हों आया सामै ते हंडिया, पांज किरसान मुजेरे मेहंदिया, कन कोई कढ ना हंगई, नानक बुट्टा कुग गराउ जियो, हों वारी घुमा जामदा, इक साहा तुद त्याए दा, उजड़ थेहो वसायो, हों तुद विटहो कुर्बान जियो, हर इत्थै नित त्याए दा, मन चिंदी सो फल पाए दा, सबे काज सवारियन, लाहियन मन की भुख जियो, मैं छड़िया सबो तंदड़ा, गुसाई सेवी सचड़ा, नौ निध नाम निधान हर, मैं पल्ले बद्दा शिक जियो, मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरे अंतर शब्द वसाया, सतगुर पुरख विखालिया, मस्तक तर कै हाथ जियो, मैं बद्दी सच धर्म साल है, गुरसिखा लहंदा पाल कै, पैर धुआं पखा फेरदा, तिस निव निव लगा पाए जियो, सुन गल्ला गुर पह आया, नाम दान इशनान दड़ाया, सब मुक्त हुआ सै सारड़ा, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ जियो, सब सिष्ट सेवे दिन रात जियो, दे कान सुन हो अरदास जियो, फूक बजाए सब डिठिया, तुस आपे नयन छड़ाए जियो, हुण हुक्म हुआ मेहरवान दा, पै कोई न किसै रियान दा, सब सुखाली बुठिया, एहो हुआ हले मीराज जियो।

चलाया। झूठा रुदन हुआ द्वाले, खिन मह भया पराया। साई वस्त प्राप्त होई, जिस स्यो लाया हित। कहो नानक प्राणी चौथे पहरे, लावी लुणिया खेत। श्री राग महला पहला, पहले पहरे रहन के बनजारिया मित्रा। बालक बुद्ध अचेत, खीर पिए खेलाइए बनजारिया मित्रा। मात पिता सुत हेत, मात पिता सुत नेहु कनेरा। माया मोह सबाई, संजोगी आया किरत कमाया।

बणजारिया मित्रा हर पाया उदर मंजार हर त्यावै हर उचरै बणजारिया मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपे आराधे विच अग्नि हर जप जीवया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीवया जिसकी वस्त तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख बीचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालिए बण जारिया मित्रा लै मात पिता गल लाए लावे मात पिता सदा गल सेती मन जाने खट खवाए जो देवे तिसे ना जाने मूड़ा दित्ते नो लपटाए कोई गुरमुख होवे सो करे विचार हर त्यावे मन लिव लाए कहो नानक दूजे पहरे प्राणी तिस काल न कबहू खाए तीजे पहरे रहन कै बण जारिया मित्रा मन लगा आल जंजाल धन चितवै धन संचवै बण जारिया मित्रा हर नामा हर ना संभाल हर नामा हर हर कदे ना संभालै जे होवै अंत सखाई एहो धन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनो कृपा करे गुरमेले सो हर हर नाम संभाल कहो नानक तीजे पहरे प्राणी जे जाए मिले हर नाल चौथे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा हर चलण वेला आंदी कर सेवहु पूरा सतगुरु बण जारिया मित्रा सब चली रहण विहांदी हर सेवहु खिन खिन ढिल मूल ना करहु जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सीती सदमान हुरलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सत गुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफलियो रहण भगतां दी श्री राग महला पंजवा पहले पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा धर पाए ता उदरे माहे दसी मासी मानस किया बण जारिया मित्रा कर मोहलत कर्म कमाहे मोहलत कर दीनी कर्म कमाणे जैसा लिखत तुर पाया मात पिता भाई सुत बनता तिन भीतर प्रभु संजोया कर्म सकर्म कराए आपे इस जनते वस किश नाही कहो नानक प्राणी पहले पहरे धर पाए ता उदरे माहे दूजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा पर जवानी लहरी दे बुरा भला ना पछाणी बण जारिया मित्रा मन मत्ता अहमेव बुरा भला ना पछाणे प्राणी आगे पंथ करारा पूरा सतगुर कबहू ना सेवया सिर ठाडी जम जंदारा धर्म राय जब पकरस बबरे तब क्या जवाब करे कहो नानक दूजे पहरे प्राणी पर जोबन लहरी दे तीजे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा एक संचय अंध अज्ञान पुत्र कलत्र मोहे लपटिया बण जारिया मित्रा अंतर लहर लुभान अंतर लहर लुभान प्राणी सो प्रभ चित न आवै साध संगत स्यो संग न किया बहु जोनी दुख पावे सिरजनहार वसारिया स्वामी एक निमख न लगो ध्यान कहो नानक प्राणी तीजे पहरे बिक संचे अंध अज्ञान चौथे पहरे रहण कै बण जारिया मित्रा दिन नेड़े आया सोई गुरमुख नाम संभाल तू बण जारिया मित्रा तेरा दरगाह बेली होए गुरमुख नाम संभाल प्राणी अंते हुए सखाई एहो मोह माया तेरे संग ना चाले झूठी प्रीत लगाई सगली रहण गुदरी अंधियारी सेव सतगुर चानण होए
कहो नानक प्राणी चौथे पहरे दिन नेड़े आया सोए लिखिया आया गोविंद का बनजारिया मित्रा उठ चले कमाना साथ एक रत्ती बिनवना देवनी बनजारिया मित्रा ऊनी तकड़े पाए हाथ लिखिया आया पकड़ चलाया मनमुख सदा दुहेले जिन्नी पूरा सतगुर सेवया से दरगाह सदा सुहेले कर्म धरती शरीर जोग अंतर जोगो ऐसो खात कहो नानक भगत सोह दरबारी मनमुख सदा पवात श्री राग महला चौथा घर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मुंद यानी पेयड़ क्यों कर हर दर्शन पिखे हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सहोरड़ कम सिखे सहोरड़ कम सिखे गुरमुख हर हर सदा ते आए सहिया विच फिरे सुहेली हर दरगाह बहां लड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखे मुंद यानी पेयड़ गुरमुख हर दर्शन दिखे व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड बलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा पिनसिया हर रतन पदार्थ लादा हौ मैं रोग गया दुख लाथा आप आपे गुरमत खादा अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे ना जाया व्याह हुआ मेरे बाबला गुरमुखे हर पाया हर सत सते मेरे बाबला हर जन मिल जन सुहंदी एव कड़े हर जप सुहेली विच सहुरड़ खरी सुहंदी सहुरड़ विच खरी सोहंदी जिन पेव कड़े नाम संभालिया सब सफल्यो जन्म तिन्ना दा गुरमुख जिन्ना मन जिन पासा ढालिया हर संत जना मिल कार्ज सोया वर पाया पुरखे आनंदी हर सत सत मेरे बाबला हर जन मेल जन सुहंदी हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर कपड़ो हर सोभा देव हो जित सवर है मेरा काजो हर हर भगती काज सुहेला गुर सत गुर दान दवाया खंड वर पंड हर सोभा होई एहो दान नार लै रलाया होर मनमुख दाज जे रख दखल है सो कूड़ अहंकार कच पाजो हर प्रभ मेरे बाबला हर देव हो दान मैं दाजो हर राम राम मेरे बाबला फिर मेल तन वेल वदंदी हर जुगा जुगो जुग जुगा जुगो सद पीढ़ी गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्नी गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कब ही बिनसै जावे नित देवे चढ़े सो आया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सोहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जियो मित्रा गोविंद नाम संभाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निबह तेरे नाले संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई ना जाए मन चिंदे से फल पावह चरण कमल चित लाए जल थर पूर रहया बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग भ्रम जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्रा देख सागर संसारी चरण कमल कर बोहित करते सहसा दुख न व्यापे गुर पूरा भेटै वड भागी आठ पहर प्रभ जापे आदि जुगादी सेवक स्वामी भगता नाम आधारी
नानक सिख दे मन प्रीतम बिनहार झूठ पसारे मन प्यारिया जियो मित्रा हर लदे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा हर दर निहचल मल्ली हर दर सेवे अलख अपेवे निहचल आसन पाया तह जन्म ना मरन ना आवन जाना संसार दुख मटाया चित्रगुप्त का कागद फारिया जमदूता कछु ना चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लगे खेप सवली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर नाम जपत परगासो सिमर स्वामी सुख गामी इच्छ सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले श्री वछुनिया अंतर बाहर सरबत रविया मन उपजिया विश्वासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संतां संग निवासो मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मन लीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मेल जीवे मीना हर पी आगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन बुठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुन्नी सतगुर तुठे लड़ लीने लाए नौ निद पाए नाओ सर्बस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग के शंत महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना हठ मजाहु महापिरी पस्ते क्यों दीदार संत सरनाई।

मन वांछत फल देत है स्वामी, जी की बिरथा सारी, नाथ के नाते सब कै साथी, जप जुए जन्म ना हारी है, नानक की बेनंती प्रभ पह, कृपा कर पव जल तारी है, दखना धूड़ी मजन साधखे, साई थिए कृपाल, लद्दे हब्बे थोकड़े, नानक हर तन माल संत, सुंदर स्वामी ता

आप मोहियो जस नानक आप सुनियो हे संत प्रेम ठगौरी पाए रिझाए गोविंद मन मोहया जियो संतन कै प्रसाद अगाध कंठे लग सोहया जियो हर कंठ लग सोहया दोख सब जोहया भगत लखियण कर वस पए मन सर्ब सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सब मिट गए सखी मंगलो गाया इच पुजाया बहुड़ ना माया होया कर गहलीने नानक प्रभ प्यारी संसार सागर नहीं।

मरी सतगुर दयाल कृपाल भेट तहरे काम क्रोध लोभ मारिया कथन ना जाए अकथ स्वामी सदकै जाए नानक वारिया श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सिरिया सब कोई जियो हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिस बिन अवर ना कोए जो मोहे माया चित लाइंदे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए मैं हर बिन अवर ना कोए हर गुर सरनाई पाईऐ बणजारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए रहाओ संत जना मिन पाईया हर किने न पाया नाउ विच हऊ मैं कर्म कमावंदे ज्यों वेसवा पुत निनाउ पिता जात ता होई है गुर तुठा करे पसाउ वड भागी गुर पाया हर एलस लगा पाउ जन नानक ब्रह्म पछाणिया हर कीरत कर्म कमाओ मन हर हर लगा चाओ गुर पूरे नाम दरड़ाया हर मिलिया हर प्रभ नाओ रहाओ जब लग जोबन सास है तब लग नाम त्याए चलदिया नाल हर चल सी हर अंते लए छडाए हों बलिहारी तिनको जिन हर मन उठायाए जिन्नी हर हर नाम ना चेत्यो से अंत गए पछताए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम त्याए मन हर हर प्रीत लगाए वड भागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ हर आपे आप उपाएंदा हर आपे देवैली हर आपे भरम भलाएंदा हर आपे ही मत दे गुरमुखा मन परगास है से विरले के हौ बलिहारी तिनको जिन हर पाया गुरमते जन नानक कमल परगासिया मन हर हर गुठड़ाए मन हर हर जपन करे हर गुर सरनाई भज पौ जिंदू सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत गुरपूरा सतगुर भेटीऐ हर आए वसै मन चित मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत मैं हर हर नाम वसाऊ है हर नामे ही जत पत जन नानक नाम त्याया रंग रतड़ा हर रंग रत हर त्याऊ हो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत रहाओ जिनको पूर्व लिखिया से आए मिले गुर पास सेवक पाए बणजारिया मित्रा गुर हर हर नाम परगास तन तन बणजवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास गुरमुखा दर मुख उजले ते आए मिले हर पास जन नानक गुर तिन पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास हर त्याहु सास ग्रास मन प्रीत लगी तिन्ना गुरमुखा हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा सलोका नाल सलोक महला तीजा रागां विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निःचल मत अपार रतन अमोलक पाया गुर का शब्द बीचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा शरीर अकार नानक सच्चै सच गुर सेवै सदा सच वापार महला तीजा होर बिरहा सब तात है जब लग साहिब प्रीत ना होए एहो मन माया मोहया वेखण सुनण ना होए सह देखे बिन प्रीत ना उपजै अंधा क्या करे नानक जिन अखी लीतियां सोई सच्चा दे पौड़ी हर इको करता एक
इको दीमान हर हर इक सैदा है अमर इको हर चित धर हर तिस बिन कोई नाही डर भ्रम भउ दूर कर हर तिसै नु सलाहे जे तुद रखै बाहर कर हर जिसनो होए दयाल सो हर जप भउ बिकम तर श्लोक महला पहला।

तू आपे कमल अलिप्त है सह थां विच गुलाल तू आपे मुक्त कराएंदा एक निमख करी कर ख्याल हर तुद हो बाहर किस नहीं गुर शब्दी वेख निहाल सलोक महला तीजा हुक्म न जाने बहुतारो है अंदर धोखा नींद ना सोवे जे तन खसमे चले रजाई दर कर सुबा महल बुलाई नानक करमी एह मत पाई गुर प्रसादी सच समाई महला तीजा मनमुख नाम विहूनिया रंग कुसुम्बा देख ना भुल इसका रंग दिन थोड़िया सोचा इसदा मुल दूजा लगे पच मोए मूर्ख अंध गवार बिष्टा अंदर कीट से पै पचह वारो वार नानक नाम रते से रंगले।

कर्म परापत होए, सत्य रत्ते गुर शब्द सियो, तिन सच्ची सदा लिव होए, नानक जिसनो मेले ना विछड़ै, सहज समावै सोई महला तीजा, सो भगवती जो भगवंत जानै, गुर प्रसादी आप पछाणै, धावत राखै इकत घर आणै, जीवत मरै हर नाम बखाणै, ऐसा भगवती उत्तम होए, नानक सच समावै सोए महला तीजा, अंतर कपट भगवती कहाए, पाखंड पार ब्रह्म कदे ना पाए, पर निंदा करे अंतर मल लाए, बाहर मल धोवै मन की झूठ ना जाए, सत

पूर्व लिखिया सु मेटना न जाए, नानक बिन सतगुर सेवे मोख न पाए। पौड़ी सतगुर जिनी त्याया से कर न सुवाही, सतगुर जिनी त्याया से तृप्त अगाही। सतगुर जिनी त्याया तिन जम डर नाही, जिन को हुआ कृपाल हर से।

पहला क्या हंस क्या बगला जां कौ नदर करे जो तिस भावे नानका कब हो हंस करे पौड़ी कीता लोड़ी है कम सो हर पह आखी है कार्य दे सवार सतगुर सच साखी है संता संग निदान अमृत चाखी है तै पंजन मेहरवान दास की राखी है नानक हर गुण गाए अलख प्रभ लाखी है श्लोक महला तीजा जियो पिंड सब तिसका सब सह दे आधार नानक गुरमुख सेवी है सदा सदा दातार हौ बलिहारी तिनको जिन त्याया हर निरंकार ओना के मुख सद उजले ओना नु सब जगत करे नमस्कार महला तीजा सतगुर मिलिया उल्टी पई नव निद खर्च्यो खाओ अठारह सिद्धि पिछे लगिया फिर निज कर वसे निज थाए अनहद धुनी सद वज दे हुन मन हर लिव लाए नानक हर भगत तिना कै मन वसे जिन मस्तक लिखिया धुर पाए पौड़ी हौ ढाडी हर प्रभ खसम का हर कै दर आया हर अंदर सुई पुकार ढाडी मुख लाया हर पुछया ढाडी सद कै कित अर्थ तू आया नित देव हो दान दयाल प्रभ हर नाम ते आया हर दाता हर नाम जपाया नानक पै नाया शुद्ध

जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना कुमा जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अधिक लाड तार, पेखत ही जमराव हसे। ऐसा तैं जग भरम लाया, कैसे बूझे जब मोहया है माया रहाओ। कहत कबीर छोड़ बिख्या रस, इत संगत निश्चौ मरना। रमैया जपोह प्राणी, अनत जीवन बाणी। इन बिद भव सागर तरना, जां तिस भावै ता लागै भाव। परम भलावा विचों जाए, उपजै सहज ज्ञान मत जागै। गुर प्रसाद अंतर लिव लागै।

जरा मरण भव विसर गया, कटंब देख बिकसह कमला ज्यों, पर कर जो है कपट नरा, दूड़ा आयो हे जमह तना, तिन आग लड़ै मैं रहन ना जाए, कोई कोई साजन आई कहे, मिल मेरे बीठला लै बाहड़ी वलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर पया, माया मूठा चेतस नाही जन्म गवायो आलसिया, विखम घोर पंथ चालना प्राणी, राव सस तह ना प्रवेशं, माया मोह तब बिसर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राहो, तह कर दल करन महाबली,

बदत त्रिलोचन रामैया श्री राग भगत कबीर जियो का अचर्ज एक सुनोरे पंडिया अब किश कहन न जाय सुर नार गण गंधर्व जिन मोहे त्रिभुवन में खुली लाई राजा राम अनहद किंगुरी बाजे जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रहाओ पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया कनक कलस एक पाया तिसमह तार चोए अत निर्मल रसमह रसन चुआया एक जो बात अनूप बनी है पवन प्याला साजिया तीन पवन मह एको जोगी कहो कवन है राजा ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम कहो कबीर रंग राता और दुनी सब परम पलानी मन राम रसायन माता श्री राग बाण।

नारे गर्भ कुंडल जब आसत उर्द ध्यान लिव लागा मृतक पिंड पद मादना अहनस एक अज्ञान सो नागा ते दिन सम्मल कष्ट महा दुख अब चित अधिक पसारिया गर्भ छोड़ मृत मंडल आया तो नरहर मनहु बिसारिया फिर पछतावेगा मूड़िया तू कमल कमत भ्रम लागा चेत राम नाही जमपुर जाहेगा जन बिचरे अनरादा रहाओ बाल बनोद चिंद रस लागा खिन खिन मोहे प्यापे रस मिस मेद अमृत बिख चाखी तो पंच प्रगट संतापे जप तप संयम छोड़ सुकृत मत राम नाम ना अरादिया उछलिया काम काल मत लागी तो आन सकत गल बांधिया तरुण तेज पर त्रय मुख जो है सर अपसर ना पछाणिया उन्मत काम महा बिख भूले पाप पुन ना पछाणिया सुत संपत देख इहो मन गर्भिया राम हृदय ते खोया अवर मर्त माया मन तूले तो भग मुख जन्म बगोया कुंडर केस कुसम ते तौले सपत पाताल की बाणी लोचन श्रम है बुद्ध बल लाठी ता काम पव समाधानी ता ते बिख भई मत पावस काया कमल कुमलाना अवगत बाण छोड़ मृत मंडल तो पाछे पछताना निकुटी दे देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझे लालच करे जीवन पद कारण लोचन कशु ना सूझे थाका तेज उड्या मन पंखी तारे आंगन ना सुखाई देनी कह सुनो रे भगत हो मरन मुक्त किन पाई श्री राग तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक

तुम जो नायक आछो अंतर जामी प्रभ ते जन जानी जय जन ते स्वामी शरीर आराध्य मोको विचार देहू रविदास सम दल समझावै को राग माज चौपदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम त्याया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर्च लिया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दड़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मलावै मेरे प्राण जीवाया।

मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दसे हर नर हरिय जियो, मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने, हो रह ना सका बिन नाम वखाणी, मैं औखद मंत्र दीजै गुरपूरे, मैं हर हर नाम उधरिय जियो, हम चातरक दीन सतगुर सरनाई, हर हर नाम बूंद मुख पाई, हर जल निद हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिय जियो, माज महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भुख लगाई, मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन भीजै जियो, मिल सतसंग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पाणी, हर हर अमृत हर मन भावै, मिल सतगुर अमृत पीजै जियो, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भ्रम चोटा खावै, बिन भागा सतसंग ना लभै, बिन संगत मैल परिजै जियो, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, हर हर नाम दया मन तारे, गुरमत नाम मीठा मन पाया, जन नानक नाम मन पीजै जियो, माज महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया, मन हर रंग राता हर रस पी आया, हर हर नाम मुख हर हर बोली, मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो, आवहु संत मैं गल में लाइए, मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइए, हर के संत मिलो मन देवा, जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो, वड भागी हर संत मलाया, गुरपुरे हर रस मुख पाया, भागहीन सतगुर नहीं पाया, मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो, आप दयाल दया प्रभ तारी, मल हूं मैं बिखिया सब नेवारी, नानक हट पटन विच काया, हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो, माज महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम त्याई, मिल संगत मन नाम वसाई, हर प्रभ अगम अगोचर स्वामी, मिल सतगुर हर रस की चै जियो, तन तन हर जन जिन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता, पाम मनुआ मल मल धुआ, मिल हर जन हर रस पीचै जियो, सतगुर दातै नाम दिड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया, अमृत रस सच अमृत बोली, गुरपुरै अमृत लीचै जियो, हर सत संगत सत पुरख मिलाइयै, मिल सत संगत हर नाम त्याइयै, नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरम

उत्तम दसे तिसकै हौ वारिया मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन हौ सतगुर विटो कुमाइया जियो जह जह देखा तह तह स्वामी तू घट घट रविया अंतर जामी गुर पूरै हर नाल देखा लिया हौ सतगुर विटो सदवारिया जियो एको पवन माटी सब एका जोत सबाइया सब एका जोत वरतै भिन भिन ना रली किसै धीर लाइया गुर प्रसादी एक नदनी आया हौ सतगुर विटो बताया जियो जन नानक बोलै अमृत बाणी गुर सिखा कै मन प्यारी पाणी उपदेश करे गुर सतगुर पूरा गुर सतगुर पर उपकारिया जियो सत चौपदे महले चौथे के माज महला पंजवा चौपदे घर पहला मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई बिलप करे चातरक की न्याई त्रिखा न उतरै शांत न आवै बिन दर्शन संत प्यारे जियो हौ भोली जियो कोल कमाई गुर दर्शन संत प्यारे जियो रहाओ तेरा मुख सहावा जियो सहज धुन बाणी चिर होवा देखे सारिंग पाणी तन सो देश जहां

आत्मगर बिखम तिना ही जीता। तुम दाते तुम पुरख बधाते, तुद जेवड अवर ना सूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुर्मत बिनसी कुबुद अपागी। सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिनसे पूरा जियो। माज महला पंजवा विसर नाही ए बड़दाते, कर किरपा भगतन संग राती। दिन सरहण जियो तुद त्याई, एहो दान मोहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सब किश दिया पलिया जाई। आनंद बनोद चोज तमाशे, तुद भावै सो होना जियो। जिस दा दिता सब किश लैना, शक्ति ही अमृत भोजन खाना। सेज सुखाली सीतल पवना, सहज केल रंग करना जियो। सा बुद्ध दीजै जित विसरह नाही, सा मत दीजै जित तुद त्याई। सास सास तेरे गुण गावा, ओट नानक गुर चरना जियो। माज महला पंजवा सिफत सलाहन, तेरा हुक्म रजाई। सो ज्ञान ध्यान जो तुद पाई, सोई जप जो प्रभ जियो पावै। भाणे पूर ज्ञाना जियो, अमृत नाम तेरा सोई गावै। जो साहिब तेरा मन पावै, तू संतन का संत तुम्हारी। संत साहिब मन माना जियो, तू संतन की करह प्रतपाला। संत खेल है तुम संग गोपाल।

जो तुद मन पानी तिनकै संग सदा सुख पाया हर रस नानक तृप्त अगाना जीयो माज महला।

प्यास प्यासा तुमरी तुम ही संग मन लीना जियो। ज्यों बारक पी खीर अगावे ज्यों निरतन तन देख सुख पावे। त्रिखावंत जल पीवत ठंडा त्यों हर संग इहो मन पीना जियो। ज्यों अंधियार है दीपक परगासा परता चितवत पूर्ण आसा। मिल प्रीतम ज्यों होत आनंदा त्यों हर रंग मन रंगीना जियो। संतन मोको हर मार्ग पाया साध कृपाल हर संग गजाया। हर हमरा हम हर के दासी नानक शब्द गुरु सच दीना जियो। माज महला पंजवां अमृत नाम सदा निर्मलिया सुखदाई दुख बढ़ारन हरिया। अवर साध चख सगले देखे मन हर रस सब ते मीठा जियो। जो जो पीवै सो तृप्तावै अमर होवै जो नाम रस पावै। नाम निदान तिसह प्रापत जिस शब्द गुरु मन बूठा जियो। जिन हर रस पाया सो तृप्त आगाना जिन हर साध पाया सो नाही डुलाना। तिसह प्रापत हर हर नामा जिस मस्तक पागी था जियो। हर एक सहाथ आया वरसाने बहुतेरे किस लग मुक्त भय कनेरे। नाम निदाना गुरमुख पाई है कहो नानक विरली दीठा जियो। माज महला पंजवा निद सिद रिद हर हर हर मेरा। जन्म पदार्थ गहर गंभीर है लाख कोट खुशियां रंग रावै। जो गुर लागा पाई जियो दर्शन पेखत पए पनीता। सगल उदारे पाई मीता अगम अगोचर स्वामी अपना। गुर कृपा ते सच त्याई जियो। जाको खोज है सर्ब उपाय वडभागी दर्शन को विरला पाए। ऊच अपार अगोचर थाना ओह महल गुरु देखाई जियो। गहर गंभीर अमृत नाम तेरा मुक्त पया जिस हृदय बसेरा। गुरबंधन तिनके सगले काटे जन नानक सहज समाई जियो। माज महला पंजवा प्रभ कृपा ते हर हर त्यावो प्रभु दया ते मंगल गावो। उठत बैठत सोवत जागत हर त्याय सगल अवरदा जियो। नाम औखद मोको साधु दिया किल बिख काटे निर्मल थिया। आनंद भया निकसी सब पीरा सगल बनास।

तिस बलिहारी जिन रसना पणिया वार वार जाई तिस विटहु जो मन तन तुद आराधे जीउ तिस चरण पखाली जो तेरे मार्ग चाले नैन निहाली तिस पुरख दयाले मन देवा तिस अपने साजन जिन गुर मेल सो प्रभ लादे जीउ से वड पागी जिन तुम जाने सब कै मदे अलिपत निर्बाणी साध कै संग उन पौ जल तरिया सगल दूत उन साधे जी।

आपे तुद संभालिए दियो। तू ठाकुर सेवक फुन आपे, तू गुपत प्रगट प्रभ आपे। नानक दास सदा गुण गावे, एक पूरी नदर निहार।

से नेतर परवान जिन्नी दर्शन पेखा, से कर भले जिन्नी हर जस लेखा, से चरण सहावे जो हर मार्ग चले, हौ बाल तिन संग पछाणा जियो, सुन साजन मेरे मीत प्यारी, साध संग किन माही उधारी, किल बिख काट हुआ मन निर्मल,

दयाला सगले तृप्त अगाए जीओ वाण त्रिण त्रिपवन की तुन हरिया कर्णहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जीओ माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय, जित जित पाणा तित तित लाए, सब किछ कीता तेरा हुवै, नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख।

गुर प्रसाद मन धारू तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जीओ सत सत सत प्रभ सोई।

तिन भीतर हर हर हर गुण जापे जीओ माज महला पंजवा। आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गाव है गुण अगम अपारी गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याई जिन हम किए जीओ जन्म जन्म के किल बिख जावे है।

निंद गुसाई, मेघ वरसह सबनी थाई, दीन दयाल सदा किरपाला, ठांड पाई कर तारी दियो, अपने जी जंत प्रित पारी, ज्यों बारक माता संभारी, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारी जियो, जल थल पूर रहया मेहरवाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना, रैन दिन सतिस सदा त्याई, जे थिन मह सगल उदारी जियो, राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मन तन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज महला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे।

हररु की रोटी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, जान विसु की वाड़ी जियो, संता से तिरंग न लाए, साकत संग विकर्म कमाए, दलाब देखोई अज्ञानी, जड़ अपनी आप उपाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला।

सुख सहज धुन उपजी साधु संग निवासा जीओ लागी प्रीत ना तू कै मूले हर अंतर बाहर रहया पर पूरे सिमर सिमर सिमर गुण गावा काटी जम की फासा जीओ अमृत वर्ख है अनहद बाणी मन तन अंतर शांत समाणी तृप्त अगाए रहे जन तेरे सतगुर किया दिलासा जीओ जिसका साह किसते फल पाया कर कृपा प्रभ संग मलाया आमन जान रहे वडभागी नानक पूर्ण आसा जीओ माज महला पंजवा मीह पया परमेश्वर पाया जी जंत सब सुखी वसाया गया कलेश पया सुख साचा हर हर नाम संभाली जीओ जिसके से तिन्ही प्रित पारी पार ब्रह्म प्रभ पये रखवारी सुनी बेनंती ठाकुर मेरा पूर्ण होई काली जीओ सर्ब जिया कहो देवनहारा गुर प्रसादी नदर निहारा जल थल महियल।

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जियो। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जियो। सुख दाता दुख भंजन हारा, आपे बख्श करे जी सारा। अपने कीते नो आप प्रित पाले, पै पै रीत सह मनाई जियो। जा की सरन पया गत पाई, सास सास हर नाम ते आई है। तिस बिन होर ना

मन इको सच्चा हुक्म पछाणी सहज संतोख सदा त्रिपतासे अनद खसम कह पाणे जीओ हथी दिती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारी नानक दास की

गुरु के चरण बसे मन माही, अंगीकार किया तिन करते, दुख का डेरा टाहया जीओ, मन पन वसया सच्चा सोई, बिखड़ा थान ना दिसे कोई, दूत दुश्मन सब सज्जन हुए, एको स्वामी आहया जीओ, जो किछ करे सो आपे आपे, बुद्ध सियाणप किशु ना जापे, अपने संतान आप सहाई, प्रभ भरम भलावा लाहया जीओ, चरण कमल जन का आधारू, आठ पहर राम नाम वपारू, सहज आनंद गावे है गुण गोविंद, प्रभ नानक सर्ब समाहया जीओ, माज महला पंजवा, सो सच मंदर जित सच त्याई है, सो रिदा सुहेला जित हर गुण गाई है, सा धरत सुहावी जित वस है हर जन,

जन तेरे सच शब्द मन माणो जीओ सच सलाहन वड भागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है

भरम खोया गुरु पूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडे ऊच अपारा नौ निद नाम भरे भंडारा आदि अंत मद प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो कर किरपा मेरे दीन दयाला जाचक जाचै साधर वाला देहे दान नानक जन मांगै सदा सदा हर त्याई जियो माज महला पंजवा ऐथै तू है आगे आपे जी जंतर सब तेरे थापे तुद बिन अवर ना कोई करते मैं

तिन्हीं सुख पाया, सो जन्म न जूए हारी जीव। नाम अवखद जिन जन तेरे पाया, जन्म जन्म का रोग गवाया। हर कीर्तन गाव हो दिन राती, सकल एहा है कारी जीव। दृष्ट तार अपना दास सवारिया, घट घट अंतर पार ब्रह्म नमस्कारिया। एक सवेण होर दूजा नाई, बाबा नानक एहे मत सारी जीव। माज महला पंजवां, मन तन रत्ता राम प्यारी। सरबस दीजै अपना वारी, आठ पहर गोविंद गुण गाई है।

तरी जय सागर कटिया जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसिया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव माज महला पंजवा सिमरत नाम हृदय सुख पाया कर कृपा भगती प्रगटाया संत संग मिल हर हर जपिया।

सब परोई इकत धागै जिस लाई लय सो चरणी लागै ऊंद कवल जिस होई परगासा तिन सर्व निरंजन।

निर्मल जिन देखे सब उतर है कलमल नानक नाम त्याय त्याय जीवै बिनसिया भ्रम भव तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे तिस

आनदेन नित जागी, बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले, जिस कह मस्तक लहना, चरण कमल भगता मन उठे, बिन परमेश्वर सगले मुठे, संत जना की धूड़ नित बांछ है, नाम सच्चे का गहना, उठत बैठत हर हर गाइय, जिस सिमरत वार निह चल पाइय, नानक कहो प्रभ होए दयाला, तेरा कीता सहना, राग माज अष्टपदियां महला पहला घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पाया माया मोह चकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हो आजी अन दिन हर गुण गावणिया रहाउ तन मन खोजे ता नाउ पाई धावत राखै ठाक रहाई गुर की बाणी अन दिन गावै सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साथ मिले ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द बजावणिया।

तह नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावणिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाई, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुखदाता, सब इच्छा आप पुजावणिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम त्यावणिया, अण दिन राते जो हर पाई, मेरे प्रभ मेले मेल मलाई, सदा सदा सच्चे तेरी सरनाई, तू आपे सच बुझा बनिया, जिन सच जाता से सच समाणी, हर गुण गावे सच बखाणी, नानक नाम रते बैरागी,

सदा नाली, गुर प्रसादी को नदर निहाली, मेरा प्रभ अत ऊचो ऊचा, कर कृपा आप मनावणिया, माया मोहे एहो जग सुत्ता।

लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई, नानक नाम त्याए सच राती, जो तिस भावै सो कार करावणिया। माज महला तीजा, अंदर हीरा लाल बनाया, गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवट्टी लावणिया। हों वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया, अंजन माहे निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अत अगम अपारा, गुरमुख हो ऐसोई पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई, सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा, प्रेम प्रीत सदा त्याई, पै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे

कह आप उपाया, दुबदा दूजा त्रिविद माया, चौथी पौड़ी गुरमुखी उची, सचो सच कमावणिया। सब है सच्चा जे सच्चे पावे, जिन सच जाता सो सहज समावे, गुरमुख करनी सच्चे सेवै, सच्चे जाए समावणिया। सच्चे बाजो को अवर न दुआ, दूजे लाग जग खप खप मुआ, गुरमुख होवै सो एको जाने, एको सेव सुख पावणिया। जी जंत सब सरण तुम्हारी, आपे धर देख कच्चे।

आज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चे शब्द बजावण।

लाया तुद सलाहे ना रजा कबहू सच्चे नावै की भुख लावणिया एको वेखा अवर ना बिया गुर प्रसादी अमृत पिया।

गुर कृपा ते हर निरपौ ध्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ। मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धूता थाई ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया। मन मुख अंधे किशु ना सूझै मरन लखाए आए नहीं बूझै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामे जन्म गवावणिया। सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईए मुख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया। रसना हर रस राती

तर पीजै वैस सुखान हर गुण गावे है। आपे कर सत मनावणिया जिसनो नदर करे सो पाई गुर प्रसादी हो मैं जाई। नानक नाम वसै मन अंतर दर सच्चै सो बा पावणिया। माज महला तीजा सतगुर सेवै वड्डी वड्याई। हर जी अचिंत वसै मन आई हर जी ओ सफले ओ बिरख है अमृत जिन पीता तिस तिखा लहावणिया। हों वारी जी ओ वारी सच संगत मेल मनावणिया। हर सत संगत आपे मेले गुर शब्दी हर गुण गावणिया। रहाओ सतगुर सेवी शब्द सुहाया जिन हर का नाम मन वसाया। हर निर्मल हों मैं मैल गुआई दर सच्चै सो

शब्द बड़ियाई देवणिया रहाउ वेला वखत सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वड़ियाई गुर कृपा ते सच पावणिया पाओ भोजन।

निर्मल बाणी शब्द वखाण है, सच्चे सेव सदा सुख पायन, नौ निद नाम मन वसावणिया, सुथान सुहाया जो हर मन पाया, सत संगत बह हर गुण गाया, अन दिन हर सलाह है साचा, निर्मल नाद बजावणिया, मन मुख खोटी रास खोटा पासारा, कूड़ कमावण दुख लागै पारा, परमे भूले फिरन दिन राती, मर जन्म है जन्म गवावणिया, सच्चा साहिब मैं अत प्यारा, पूरे गुर कै शब्द आधारा, नानक नाम मिलै वडियाई, दुख सुख सम कर जाननिया, माज महला तीजा, तेरिया खाणी तेरिया बाणी, बिन नावै सब परम पलाणी।

हर सच्चा गुर भगती पाई है सहजे मन वसावणिया रहाउ सतगुर सेवे ता सब किश पाए जेही मनसा कर लागे तेहा फल पाए सतगुर दाता सबना वथू का पूरे भाग मलावणिया इहो मन मैला एक न त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजै पाए तट तीरथ दसंतर भवै अहंकारी होर वधेरै होमै मल लावणिया सतगुर सेवे ता मल जाए जीवत मरै हर स्यों।

अंधारा। बिस्ता के कीड़े बिस्ता कमावे हैं, फिर बिस्ता माही पचावणिया। मुक्ते से वे मुक्ता हुए, हम मैं ममता शब्द देखो है। अन दिन हर जीव

बिदमाया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके चौथे पद की सार ना पावणिया आपे रंगे रंग चढ़ाई से जल राते गुर शब्द रंगाई हर रंग चढ़िया अत अपारा हर रस रस गुण गावणिया गुरमुख रिद सिद सच संयम सोई गुरमुख ज्ञान नाम मुक्त होई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लो शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हौ वारी जियो वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतर।

मूड़ा बाहर पाली, मनमुख अंधे फिर है बेताली। जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे, मनमुख परम भुलावणिया।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई है नाही, शब्द है मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम अधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

पावणिया। किस बाजहू सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाई लय सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत शब्द अमृत हर बाणी सतगुर सेवै हृदय समाणी नानक अमृत नाम सदा सुख दाता पी अमृत सब भुख लह जावणिया माज महला तीजा अमृत वरसै सहज सुपाई गुरमुख विरला कोई जन पाई अमृत पी सदा तृप्तासी कर कृपा तृष्णा बुझावणी।

बनाई। नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी। तुझते बाहर किस ना होवे, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बिचारा,

जिसनो आप पी आए, गुर प्रसादी सहज निभलाए, पूरन पूर रहया सब आपी, गुरमत नदरी आवणिया, आपे आप निरंजन सोई, जिन सिर जीत ने आपे गोई, नानक नाम संभाल सदा तू, सहजे सच समावणिया, माज महला तीजा, से सच लागे जो तुद पाई।

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सच्ची लिब लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुध होवे अन दिन सच शब्द सलाही होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी कूड़ बोल बिख खावणिया गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाना नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया माज महला तीजा वर्ण रूप वरतह सब तेरे मर मर जमह फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेख्या वर्ण ना कोई गुरमति आप

निर्मल है बाणी, निर्मल जोत सब माहि समाणी, निर्मल बाणी हर सालाही, जप हर निर्मल मैल गवावणिया, हौ वारी जीओ वारी, सुखदाता मन वसावणिया, हर निर्मल गुर शब्द सलाही, शब्दो सुन तिसा मटावणिया, रहाव निर्मल नाम वसिया मन आई, मन तन निर्मल माया मोह गुआई, निर्मल गुण गावै नित साचे के, निर्मल नाद बजावणिया, निर्मल अमृत गुर ते पाया, विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया, निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल, निर्मल बाणी मन वसावणिया, जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवै, हौ मैं मैल गुर शब्दे ढोवै, निर्मल वाजै अनहद धुन बाणी, दर सच्चै सोभा पावणिया, निर्मल ते सब निर्मल होवै, निर्मल मनुआ हर शब्द परोवै, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सुहावणिया, सो निर्मल।

माया मोह इस मनहन चाई, अंतर कपट दुख पावनिया, गुरमुख भगत जा आप कराई, तन मन राता सहज सुपाई, वाणी वज्जै।

किसै मलाई, गुर शब्द मिलहै से विछड़ह नाही। सहजे सच समावणिया, तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेखहै जानहै सोई।

बनाई। सतगुर सेव सदा सुहागण, सच उपदेश सुमावणिया। शब्द वसारन तिन्ना थौर ना ठाउ, ब्रह्म भूले जो सुन्ये कर काउ। हलत पलत तिन्नी दोहें गवाई, दुखे दुख विहामणिया। लिखदियां लिखदियां कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड़ लिख है तै कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिख है विचार, से जन सच्चे।

गुरमुख हर दर शोभा पाई, गुरमुख विचों आप गवाई, आप तरह कुल सगले तारी, गुरमुख जन्म सवारनिया, गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर, गुरमुख हूं मैं चूकै पीर, गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे, गुरमुख सहज सुमावनिया, गुरमुख नाम मिले वडियाई, गुरमुख गुण गावे शोभा पाई, सदा आनंद रह दिन राती, गुरमुख शब्द करावनिया, गुरमुख आन दिन शब्द राता, गुरमुख जुग चारे है जाता, गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, शब्द भगत करावनिया, बाज गुरु है अंध अंधारा,

सत सच्चा हृदय वसावणिया, सच्चा नाम सदा है निर्मल, गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाउ आपे गुरदाता कर्म विधाता, सेवक सेव है गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सू है, गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा में एक थान सुहाया, पूरा गुर हम मैं परम चुकाया। अन दिन नाम सलाहन रंग राती, गुर किरपा ते पावणिया। गुर कै शब्द इहो गुफा विचारी, नाम निरंजन अंतर वसै मरारी। हर गुण गावै शब्द सुहाई, मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजै भाई कर लाई, नाम भूले दे सजाई। कड़ी मोहत का लेखा ले वै, रतियों मासा तोल कढावणिया। पे यड़ै फिर चेते नाही, दूजै मुठी रोवै ताही। खरी कवाले कुरूप कलखणी, सुपने फिर नहीं पावणिया। पे यड़ै फिर मन वसाया, पूरे गुर हदूर दिखाया। कामन फिर राख्या कंठ लाई, शब्दे फिर रावै सेज सुहावणिया।

पाड़ बोझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ है हर नाम सलाह है दर सच है सोबा पावणिया रहाउ अलक अपेयो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई कृपा करी ता सतगुर भेटै नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किशु ना हुए बख्शे शब्द स्वामणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंदे ऐसे।

शब्द पुछाता अन दिन भगत करे दिन राती सहजे ही सुख पावनिया सब मैं वरतै इको सोई गुरमुख विरला बूझै कोई नानक नाम रते जन सोहै कर किरपा आप मलावनिया माज महला तीजा मनमुख पढ़ै पंडित कहावै दूजै पाए महा दुख पावै बिख्या माते।

हो जलाई सो हर सिउ चित लाई हर दर महली शोभा पावणिया रहाउ देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त जिन उपाया काम क्रोध पसरिया संसारी आए जाए दुख पावणिया तिस विच ज्ञान रतन एक पाया गुर प्रसादी मन वसाया जात सत संयम सच कमावै गुरपूरै नाम त्यावणिया पे अड़ै तन परम फुलाणी दूजै लागी फिर पछोताणी हलत पलत दोवै गवाई सुपनै सुख ना पावणिया पे अड़ै तन कंत संभाले गुर प्रसादी वेखै नाले फिर कै सहज रह रंग राती शब्द शिंगार बनावणिया सफल जन्म जिन्ना सतगुर पाया दूजा भाओ गुर शब्द जलाया एको रव रहिया घट अंतर मिल सत संगत हर गुण गावणिया सतगुर ना सेवे सो काहे आया त्रिग जीवन बिरथा जन्म गवाया मनमुख नाम चित ना आवै बिन नावै बहु दुख पावणिया जिन शिष्ट साजी सोई जाने आपे मिलै शब्द पछाणे नानक नाम मिलिया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लखावणिया माज महला चौथा आदि पुरख अपरंपरे।

आप लिखत तुर पाई, नानक नाम मिले पौ भंजन, गुर शब्दी सुख पावणिया। माज महला पंजवा कर पहला, अंतर अलख न जाई लखिया, नाम रतन लै गुजा रखिया, अगम अगोचर।

सत्या तारी वडपागी दर्शन पावणिया रहाउ साधक सिद्ध जिसै कौ फिर दे ब्रह्मे इंद्र ध्यान हिरदे कोड़ ते तीसा खोजह ता।

सर्व निवासी सबना कह मन पावनिया साचा साहिब गुरमुख जापै पूरे गुर कै शब्द संजापै जिन पिया से त्रिपता से सच्चे सच अगावनिया तिस कर सहजा सोई सोहेला अणद बनोद करे सद केला सो तनवंता सो वड साहा।

आज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता कौन सो गृही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए लियो किन बिद बादा किन बिद छूटा किन बिद आवण जावण टूटा कौन कर्म कौन निह कर्मा कौन सो कह कहाए जियो।

जित तावत रहता, कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सोचाल जित पार ब्रह्म त्याई, किन विद कीर्तन गाए जियो। गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरहि उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो। हौमै बाधा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवन जावन टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो। गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो। गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याई, गुरमुख कीर्तन गाए जियो। सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहे समाए जियो। माज महला पंजवा, प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

रख मन तन पावणिया। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला, तुम संग लवै ना लावणिया। रहाव तेरा कीता जिस लागै मीठा, घट घट पार ब्रह्म तिन जन दीठा। थान थनंतर तू है इको एक वरतावणिया। सगल मनोरथ तू देवनहारा, भगती पाए परे पंडारा। दया तार राखे तुध से, पूरा कर्म समावणिया। अंधकूप ते कंडे चाड़े, कर कृपा दास नदर निहाले। गुण गावे है पूर्ण अबनासी, कह सुन तोट ना आवणिया। एथे उथे तू है रखवाला, मात गर्भ मह तुम ही पाला। माया अग्न ना पो है तिनको, रंग रते गुण गावणिया। क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बिन अवर ना जाननिया। जिसको तू प्रभ पया सहाई, तिस तत्ती वाओ न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सत संगत जप प्रगटावणिया। तू ऊच अथाह अपार अमोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकुराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवां कर दूजा, नित नित दयो संभाली है। मूल ना मनहु विसारी है, रहाव संतां संगत पाई है। जित जम कह पंथ ना जाई है।

बिसराम जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से ग्राम सरब सिंगार तंबोल रस सन देही सब खाम।

जन्म जना जल तलमई अल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाई सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वाडियां जिन्ना प्रेम बशोह हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तोह पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठे तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो वसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलहो परापत होए वैसाख सुहावा तां लगे जा संत भेट हर सोए हर जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अगै सब निवन्न।

रंगीला तिस धनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाई वगुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मथे जो लिखियास रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निराश जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यो प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नू मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े होए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरू वह रोज कीता किशु ना होवई लिखिया तुर संजोग बड़ भागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब वियोग नानक कौ प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कतक होवे साध संग बिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सहे लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन भिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल

लाख बेरियां हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पैया पोख सोहंदा सर्ब सुख जिस बख्शे वे परवाह माग मज्जन संग साधुआ तूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सबना नो कर दान जन्म कर्म मल उत्तरे।

बेनंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सो सुनी हर समृत पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरे पेय तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भाव सी संता की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को नाही तो ननहार मन तन अंतर वस रही नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बखशिंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती नजिंद गुर शब्दी आराधिय जपिय निर्मल मंत कीमत कहन ना जाइय परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायणु सो कहिय भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रैन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्ब कला प्रभ पूर्णो मन निमाणी थां हर ऊट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाऊ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाऊ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेलिया नानक एहो सुआव सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाँव वार माज की तथा

का आसिह जासनी मूल ना जाने आप बाल टंडोलिम ढूंढम डिठ मैं नानक जग तूएं का तवल हार पौड़ी तू करता पुरख अगम है आप शिष्ट अपाती रंग परंग अपार जना बहो बहो विद भांति तू जान है जिन अपाई है सब खेल तमाती एक आव है एक जाहे उठ बिन नावे मर जाती गुरमुख रंग चलूलिया रंग हर रंग राती सो सेव हो सत निरंजनो हर पुरख बधाती तू आपे आप सुजान है वड पुरख वडाती जो मन चित तुद त्याई दे मेरे सच्चिया बल बल हो तिन जाती।

ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझै लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुद पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चै नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पाणी पायाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहा सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगती परे भंडारा निर्मल नाम मनिया गर सच्चै सचियारा।

सात इस भाव सी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार न खाई गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाई मारन पाहे हराम मैं होए हलाल न जाय नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुए तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाई पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझ विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किस आगे करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुक्म सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जा हुए ता मुसलमान कहावे अवल औल दीन कर मिठा मस्कल माना माल मसावे होए मुस्लिम दीन महाने मरण जीवन का भरम चुकावे रब की रजाए मन्ने सिर उपर करता मन्ने आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलक घरवार किथे से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदर

महला पहला पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल होए थाऊ पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ महला पहला जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोहरा रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

आऊ पवड़ी बद फैली गै बाना खसम ना जाने सो कहिए देवाना आप ना पछाने कलह बुरी संसार वादे खपी है बिन नावे वेकार परमी पची है राह दो है एक जाने सोई सिजसी कुफर गो कफराने पया धजसी सब दुनिया सुबहान

चार खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सण की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बहिठ। जो दर रहे सो उबरे, नानक अजब डिठ। महला पहला, वेख जे मिठा कटिया, कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख के देन सो मल सजाए। रस कस टटर पाई, तपै तै विल लाए। पी सो फोग संभालिए।

मेरबद बादशाह अफजू खुदाई, एक तू ही एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तुई महला पहला।

एक तुई महला पहला ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो अन पौन फिर ना कोई एक तुई महला पहला ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे हस्त एक जिगर कोई एक तुई महला पहला परंदे ना ग्रहा जर दरख्त आब आस कर देहांद सुई एक तुई महला पहला नानक ललार लिखिया।

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे भावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है विण नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे पत स्यों जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावै जल नावै जां तुद भावै।

सेख कहावह, जां तुद भावै ता होवह राजे, रस कस बहुत कमावह, जां तुद भावै तेग भगावह, सिर मुंडी कट जावह, जां तुद भावै जाहे दसंतर, सुन गल्लां घर आवह, जां तुद भावै नाहिर चावह, तुद पाणी तू भावह, नानक एक कह बेनंती, होर सगले कूड़ कमावह। महला पहला, जां तू वड्डा सब वडियाईया, चंगा चंगा होई, जां तू सच्चा ता सब को सच्चा, कूड़ा कोई ना कोई, आखण वेखण बोलण चलण, जीवन मरना तात, हुक्म साज हुक्मै विच रखै, नानक सच्चा आप पौड़ी, सतगुर सेवन संग परम चुकाई है, सतगुर आखै कार सो कार कमाई है, सतगुर होए दयाल ता नाम त्याई है, लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है, मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है, सच्चे दै दर जाए सच चवाई है, सच्चा अंदर महल सच बुलाई है, नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला, कल काती राजे का साई, धर्म पंख कर उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा, दिसै नाही कह चढ़िया, हों भाल विकुन्नी होई, अंधेरै राहो ना कोई, विच हों मैं कर दुख रोई, कहो नानक किन बिद गत होई। महला तीजा, कल कीरत प्रगट चानन संसार, गुरमुख कोई उतरै पार, जिसनो नदर करे तिस देवै, नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी, भगता तै संसारियां, जोड़ कदे ना आया, करता आप अपुल है, ना भुलै किसै दा भुलाया,

पूरा जा का बोल, नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल। पौड़ी जा तू ता क्या होर, मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर, महल ना पाई है इन चित कठोर, सेव गवाई है जित घट सच ना पाई, सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट, तोल तुलाई है कोई ना आखै घट, हों मैं जाई है लइयन खरे परख, दर भी नाई है सौदा इक तहट, पूरे गुर पाई है। सलोक महला दूजा, अठी पैरी अठ खंड, नावा खंड शरीर तिस विच नौ निद नाम एक, पाल है गुणी गहीर। कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर, चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ, तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा नाम। उते अमृत वंडी है करमी हुए पसाव, कंचन काया कसी है।

गुण गाहक एक वन भुखिया भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कह गुणी समाए पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइए जाइए तन मह तृष्णा यग शब्द बुझाइए सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत

पावना, खट दर्शन कह भीख किसे सच समावना, सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना, मन्ने नाउ बसंख दरगाह पावना, खालक कौ आदेश ताडी जावना, नानक

आपण है देखू चाया पे लाए हुक्म पया तुर खसम का अत्ती हूं टका खाए गुरमुख स्यों मन मुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेखे कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक परखे।

मूल जान गल्लां करे हान लाए हान लब ना चली सच रह सो विष्ट परवान सर संदे आगास को क्यों पहुंचे बाण अगे ओह अगम है वाहे दर जान पौड़ी नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया करन भगत दिन रात ना रहनी वारिया महला मांजनवास शब्द सवारिया सच कहन अरदास सेवे चारिया सोहन खसम पास हुक्म सिधारिया सखी कहन अरदास मनो प्यारिया बिन नावै त्रिगवास फिट सो जीविया शब्द सवारी आस अमृत पीविया।

तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की कीती पुछा पुछ महला दूजा नेह पलंग तस जन्मस

पौड़ी खसम कै दरबार ढाडी वसिया सच्चा खसम कलान कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल बदौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

नानक भैवन जी मरे मुहे काले उठ जाई पौड़ी। सतगुरु हुए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुरु हुए दयाल ना कबहू चूरी है। सतगुरु हुए दयाल ता दुख ना जानी है, सतगुरु हुए दयाल ता हर रंग माणी है। सतगुरु हुए दयाल ता जम का डर के हा, सतगुरु हुए दयाल ता सद ही सुख देहा। सतगुरु हुए दयाल ता नव निद पाई है, सतगुरु हुए दयाल ता सच समाई है। सलोक महला पहला सिर खुहाए पिए है मलवाणी, जूठा मंग मंग खाही फूल फदीहत मुहे लैन पड़ासा। पानी देख सगाही भेडा वांगी सिर खुहायन, भरियन हथ सुआही माऊ पीऊ किरत गवायन। टब्बर रोवन ताही ऊना पिंड ना पत्तल किरिया ना दीवा, मुए कथाऊ पाही अठसठ तीरथ देन ना ढोई। ब्रह्म

पौड़ी। तुझ सच्चे सुभान सदा कलाणिया, तू सच्चा दीवान होरिया मन जानिया। सच जे मंगह दान से तुदै जेहया, सच तेरा फरमान शब्दे सोहया।

चढ़े सुआया, नानक मंगे दान जो तुद पाया। सलोक महला दूजा, दीख्या आंख बुझाया, सिफती सच समेओ तिनको क्या उपदेसी है। जिन गुर नानक देव महला पहला, आप बुझाए सोई बुझे, जिस आप सुझाए तिस सब किस सूझे। कह कह कतना

कसम बुलाया, सच्ची सिफत सालाहा कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम पूजन आया, गुरमति खादा राज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाऊ शब्द बजाया, नानक सच सलाहे पूरा पाया, शुद्ध राग गौड़ी ग्वारी महला पहला, चौपदे दोपदे

बिन काड़त कच न कच अंधा सच्चा अंधी सट बुद्धि बाजी उपजै चाऊ सहस सियाणप पवै ना ताऊ नानक मनमुख बोलन वाऊ अंधा अखर वाऊ दुआऊ गौड़ी महला पहला।

ना डूबै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाई हंस हित आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोई कोई कोई कोई सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन न जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भय करनी कामन कर मन लय साहा संजोग व्याह वजोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महल।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ। ताँ कै सद बलिहारे जाऊ आप।

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

खुलै पड़वाऊ जेवा इंद्री एक सुवाऊ दिष्ट विकारी नाही पहु पाओ आप मारे ता पाए नाओ शब्द मरे फिर मरन ना हुए बिन मुए क्यों पूरा हुए परपंच व्याप रहया मन दोए।

गह मार सच सलाही धन गुरुद्वार नानक दर घर एक अंकार गौड़ी महला पहला उल्टे ओ कमल ब्रह्म विचार।

मन माने अमृत रस पीजे रहाउ जन्म जीत मरन मन मानिया आप मुआ मन मन ते जानिया नजर पई कार करते जानिया जत सत तीर।

उठाऊं। नानक गुरमत सहज समाऊं। गौड़ी महला पहला सतगुर मिले सो मरण दिखाई। मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई। मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाउ। सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे। जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा। गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम

गुरबचनी सत शब्द पछाता, तेरा तान नाम की वडियाई, नानक रहना भगत सरनाई, गौड़ी महला पहला, जिन अकथ कहाया अपयो पी आया, अन पै बिसरे नाम समाया, क्या डरिए डर डर है समाना, पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ, जिस नर राम हृदय हर रास, सहज सुभाए मिले साबास, जाहे सवारे सांझ बयाल, इत उत मन मुख बांधे काल, अहनस राम हृदय से पूरे, नानक राम मिले ब्रह्म दूरे, गौड़ी महला पहला, जन्म मरे त्रै गुण हितकार, चारे वेद कथ है आकार, तीन अवस्था कह बखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना हुए है मरना रहाउ, चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत सासत पंडित मुख सोई, बिन गुर अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जाके हृदय बसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई, हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा माही निराश बुझाया, दीना नाथ सर्व सुख दाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रह सुखाली, बाजी एहु संसारु, लाभ लोभ मुच कूड कमावे, बहुत उठावे पारु, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों धारि उपर चारु, सुन सुन सिख हमारी, सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहुड़ न आवे वारी रहाऊ।

पूजा मेवा मैं सब किश चाखिया, एक अमृत नाम तुम्हारा दे दे नीम दवाल उसारी, पास मंदर की तेरी

गतिशय का पण रहाउ साहू हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बन जारी जियो पिंड सब रास तिसह की मारे आपे जीवाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना मार है लूट है नीत नीत किस आगे करी पुकार जना।

हे नित कामण अवर लुटेन सो पंच जना ताई मड़ोली लूटिया देवरा सा तन पकड़ी एक जना जम डंडा गल संगल पड़िया भाग गए से पंच जना कामण लोड़े सोयना रूपा मित्र लोड़ेन सो खादाता नानक पा।

जो राते रंग लाई रे तिनकी पंक होवे जे नानक तो मूड़ा किश पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई।

केते पशु अपाई, केते नाग कुली मह आई, केते पंख उड़ाई, हट पटन बिज मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे, अगों देखै पिछों देखै, तुझते कहां छुपावे, तट तीरथ हम नव खंड देखे, हट पटन बाजारा, लैके तकड़ी तोलन लागा।

धन धरनी धरे अनत ना चाहे आ जाए अनत को चाहन जो गए से आए अनत गवाए आपन लिया जे मिले ता सब को पागठ हो।

गौड़ी बैरागण महला पहला हरनी हुआ बन बसा कंद मूल चुन खाओ गुर प्रसादी मेरा सहो मिले वार वार हों जाओ जियो मैं बनजार नाम की तेरा नाम बखर वापार जी रहाओ कोकिल हुआ अम बसा सहज शब्द विचार सहज सुपाए मेरा सहु मिले दर्शन रूप अपार मछली हुआ जल बसा जी जंत सब सार उरवार पार मेरा सहु वसे हों मिलोंगी बाहां पसार नागन हुआ तर बसा शब्द वसे पहु जाए नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए गौड़ी पूर्वी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरत आखिए करते का हुए विचार तित कर गाव हो सोहिला शिवर हो सिरजनहार तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला हों वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित जियड़े संभालियन देखे गादे मनहार तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देहो सज्जन आसी सड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरी है नानक से दे आवन राग गौड़ी गवार री महला तीजा चौपदी।

ले शब्द पछाण सतगुर कह पहे ब्रह्म पहु जाई पैरा कह सच रंग समाई रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

गौड़ी गुआरी महला तीजा सो थाओ सच मन निर्मल होए सच निवास करे सच सोए सच्ची बाणी जुग चारी जापै सब किस साचा आपे आपै कर्म होवै सत संग मलाई।

साची वाणी शब्द विचार गावत रहै जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाउ एक गावे है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत न होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाने गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वडियाई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाउ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जीवा लनहारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं बिचों तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाने गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं बिच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतिया आन दिन वेहाना हिरदय राम रमहु मेरे पाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाउ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए

समाना जित सेवे हैं दरगाह पत परवाना हर के नाम बिटो बल जाऊं तू विसर है तद ही मर जाऊं रहाओ तिन तू विसर है जे तुदे आप भुलाई तिन तू विसर है जे दूजे पाई मन

तै पुन तिन हम मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई, गुर शब्द मारन

साई गुरमुख भगत हर नाम समाई आपे दात करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिन कहो जयकार गौड़ी ग्वारी महला तीजा एक सते सब रूप है रंगा पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा पिन पिन वेखे हर प्रव रंगा एक अचरज एको है सोई गुरमुख विचारे बिरला कोई रहाउ सहज पवै प्रभ सब नीथाई कहां गुप्त प्रगट।

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई, गौड़ी महल्ला।

राम जपहु हो पवजन उतरो हो पार रहाओ परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाई मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाओ नौ निद पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया।

बिन नावै त्रिग त्रिग अहंकार, बंधन बांधियो माया पास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पगा बरसत फराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे, तैसे जाए समाही रहाओ। स्त्री पुरख होए कह क्या हुए कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांधा दूजे पाई हम कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुरचरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह ले छाए रहा लख चौरासी भरम दे मन हठिया वै जाय गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आय अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाय मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक करमी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागन महला तीजा पे अड़ै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरे वास पाया गुरमुख सहज समानिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइय रहाउ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वड भागी सतगुर मिलै मुख अमृत पाईऐ हम मैं दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाइय सब आपे आप वर्तदा आपे नाए लाइय मन मुख गर्ब ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं भावदा मन मुख परमाणी मेरे हर प्रभ लेख लिखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम त्याया भेटिया गुर सूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभ जन नानक कीरा गौड़ी बैरागन महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हों जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हों हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुणदाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुणदाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहो मूढ़ मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमती हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआररी महला चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे तर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रय त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

कथा है हर की, पाज मिल साधु संगत जन की, तर पौ जल कथ कथा सुन हर की, गोविंद सत संगत में लाई, हर रस रसना राम गुण गाय, रहाओ जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करहो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुनावे, सो जन हमरे मन चित पावे, जन पग रेन वड भागी पावे, संत जना स्यों प्रीत बन आई, जिनको लिखत लिखी।

पुत खाए मीने प्रीत पई जल नाए सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए ए हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलिया दुख जाहे हम।

जा हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख फसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाते गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाते जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी घनी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआरी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै विगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पी आवन हारा।

सौदागरी सौदागर तावे धन खटे आसा करे माया मोह वधावे त्यों हर जन हर हर बोलता हर बोल सुख पावे बिक संचय हटवानिया बह हाथ कमाए मोह झूठ पसारा झूठ का झूठे लपटाए त्यों हर जन हर तन संचया हर खर्च लै जाए इह माया मोह कटंब है।

चौथा नित दिन सरात लालच करे पर मैं परमाया वेगार फिरे वेगारिया सिर भार उठाया जो गुर की जन सेवा करे सो कर कै काम हर लाया मेरे राम तोड़ बंधन माया कर कै काम लाए नित हर गुण गावे हर नाम समाए रहाउ नर प्राणी चाकरी करे नरपत राजी अर्थ सब माया कै बंदे कै दान ले कै नरपत मर जाया तन तन सेवा सफल सतगुरु की जित हर हर नाम जप हर सुख पाया नित सौदा सूद की कै बहु भांत कर माया कह ताई जा लाहा दे ता सुख मने तू टै मर जाई जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लागे जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आगे।

था। हमरै मन चित हर आस नित, क्यों देखा हर दर्श तुम्हारा, जिन प्रीत लाई सो जानता, हमरै मन चित हर बहुत प्यारा, हाँ कुर्बानी गुरे अपने, जिन बिछड़िया मेलिया मेरा सिरजनहार।

बार बार हर गणत ना आवे, तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे, हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे, तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म हो जाए, हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए, तू गुर पिता तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले तूके सब सोग संतापे, गौड़ी बैरागण महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है, मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्शे अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुँह लै बोल है गुण विहून ना।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख दे ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछै बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सके बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हों खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच्छ पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हों गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवे हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जिहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजै दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजै मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभु स्वामी हम बन जारे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन

हम सतगुर पार ब्रह्म कर मानी, हम मूढ़ मुगद अशुद्ध मत होते, गुर सतगुर कै बचन हर हम जानी रहाउ, जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने, हर का नाम अमृत रस चाखिया, मिल सतगुर मीठ रस गानी, जिनको गुर सतगुर नहीं पेटिया ते साकत मूढ़ देवानी, तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने, जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगानी, जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा। मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी, कहो कित हर पहु नसीऐ, हर आपे बख्श लए प्रभ साचा, हर आप छुड़ाए छुटिऐ, मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ, सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना, गुर सतगुर पीछे छुटिऐ रहाउ, मेरे मन सेवहु सो प्रभ सर्ब सुख दाता, जित सेवै निज कर वसीऐ, गुरमुख जाए लहो कर अपना, कस चंदन हर जस कसीऐ, मेरे मन हर हर हर हर हर जासे उत्तम, लैला हर मन हसीऐ, हर हर आप दया कर देवै, ताय अमृत हर रस चखीऐ, मेरे मन नाम बिना जो दूजै लागे, ते साकत नर जम कुटिऐ,

लेखा छुट्टिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिलया आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिज तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई।

अन दिन अन दया बड भागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यों पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाडी हम जानिया कशु ना जान है आगे ज्यों हर राख है त्यों ठाढ़ी हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाई पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाई कर साधु अंजलि पुन वड्डाई कर डंडोत पुन वड्डाई रहाउ साकत हर रस साधना जानिया इन अंतर हम मैं कंडाई ज्यों ज्यों चल है चुभ दुख पावे है जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डाई।

हर यज्ञ में अगोचर पार ब्रह्म है, मिल सतगुर लाग बसीठा, जिन गुर बचन सुखा नेहियर है, तिन आगह आन परीठा, मन मुख हियरा अत कठोर है, तिन अंतर कार करीठा, बिसियर कौ बहु दूध पी आई है, बिक निकस फोल फलीठा, हर प्रभ आन मलाव गुर साधु, कस गरड़ो शब्द मुख लीठा, जन नानक गुर के लाले गोले, लग संगत करुआ मीठा, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हर हर अर्थ शरीर हम बेचिया, पूरे गुर कह आगे, सतगुर दाते नाम दड़ाया, मुख मस्तक भाग सुभागी, राम गुरमत हर लिव लागे रहाउ, कट कट रमैया रमत राम राय, गुर शब्द गुरु लिव लागे, हो मन तन देव काट गुरु कहो, मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागे, अंधियार है दीप ज्ञान जलाए, गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ, कर वस्त लही मन जागे, साकत बदक माया तारी, तिन जम जो हन लागे, हुन सतगुर आगै सीस ना बेचिया, वे आवह जाहे अपागी, हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकुर, हम शरण प्रभु हर मांगे, जन नानक की लाज पात गुरु है, सिर बेचे हो सतगुर आगे, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत।

गुर कै बचन हर पाया रहाउ। मेरा ही अरै प्रीत राम राय की, गुर मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सतगुर आगै, जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरा अंतर प्रीत लगी देखन को, गुर हिरदय नाल दिखाया। सहज आनंद भया मन मोरै, गुर आगै आप बिचाया। हम अपराध पाप बहु कीने, कर दुष्टि चोर चुराया। अब नानक शरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया। तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ। हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे। हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे। हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे। मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे। कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे। जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे। राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा। मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा। वड भागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो। गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वड भागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो। मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवहु संत हो मिल नाम जपाहा। विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो। मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सामन वस अमृत जग छाया जियो। मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो। जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा। आओ सखी गुण कामण करीहा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो। गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जियो।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीव मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीव हर नाम मिलिया सोहागनी मेरे गोविंदा मन अन दिन अनदर हस जीव हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लैलाहा मन हस जीव हर आप उपाए हर आपे वेखे हर आपे कारे लाया जीव एक खावे बख्श तोट न आवे एक न फक्का पाया जीव एक राजे तख्त बह नित सुखिए एक न भिख मगाया जीव सब इको शब्द वरतदा मेरे गोविंदा जन नानक नाम त्याया जीव गौड़ी माज महला चौथा मन माही मन

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। राव रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया परपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध का जय जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नाम मैं हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर कब मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना

मन लगा भाव जियो, गुर शब्दी पाई हर प्रीत मराओ जियो, वड भागी जप नाओ जियो, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जियो, हर मेलो संत जियो, गोविंद प्रभ पासा जियो, सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जियो, जन नानक पूरियड़ी मन आसा जियो, गौड़ी माध महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जियो, मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जियो, मन हर रंग रतड़ा, हर रस

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो हौ नाम बिटहु कुर्बान जियो हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो हर दसहु संतोह जी हर खोज पवाई जियो सतगुर तुठड़ा दसे हर पाई जियो हर नामे नाम समाई जियो मैं वेलन प्रेम हर बिरहो लगाई जियो गुर शरदा पूर अमृत मुख पाई।

सुपन पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो किश करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमीए भ्रम किसका होई जां जल थल महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्श मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवां कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश हो आसो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री महला पंजवा कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पाव है मिटे जम त्रास नित गाव है हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उर तार शीघ्र कार्ज लिहो सवार रहाव अपने प्रभ स्यों हो सावधान ता तू दरगाह पावह मान उगत सियाण सगली त्याग संत जना

तिसकी ओट निमुख माहि होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिसनो जान प्रभ की आज्ञा सत करमान गुर कै बचन मटाव हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत करमान रहाओ गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ।

गुर मिले अपना खसम त्याऊं रहाउ। जिन कीता मूड ते बक्ता, जिन कीता बेसुरत ते सुरता, जिस प्रसाद नवै निद पाई, सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इसते किश नाही राखन हारे कौ सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवां तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राखनहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

तन मन शीतल पहे जन्म जन्म के किल विख गए सर्व निदान पेखे मन माए अब ढूंढन काहे को जाए प्रभ अपने जब पहे दयाल पूर्ण होए सेवक काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लाख खरे।

बुझै बिगाना अपनी गत में ते आपे जानै क्या को कहे क्या आख बखाने जित जित लावह तित तित लगना अपना भला सब काहू मंगना सब किस तेरा तू करने हार अंत नाही किस पारावार दास अपने कहो दीजै दान कबहू न बिसरे नानक नाम गौड़ी गुआर री महला पंजवा अनक जतन नहीं होत छुटारा बहुत सियाण पया गल पहारा हर की सेवा निर्मल हेत प्रभ की दरगाह सोभा सेत मन मेरे गहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता झूला रहाउ ज्यो बोहित पै सागर माहे अंधकार दीपक दीपाहे अग्न सीत का लाहस दुख नाम जपत मन होवत सुख उतर जाए तेरे मन की प्यास पूर्ण होए सगली आस डोले नाही तुमरा चीत अमृत नाम जप

जिस आप दिवावे हर हर नाम जा कै हृदय वसै दुख दर्द ते नानक नसै गौड़ी गुआर री महला पंजवा बहुत दर्ब कर मन ना आघाना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्ज्यो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर भजन।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तखत सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला पर पंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्व सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जां कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

दासा कमन सो बिद जित राम गुण गाय कमन सो मत जित तरै एह माय रहाउ जो पालाई सो

संसार जो हलाहल सो पीवै बवरा अमृत नाम जानै कर कौरा साध संग कै नाही नेर लख चौरासी ब्रह्मता पेर एकै जाल फहाए पंखी रस रस भोग करहै बहुरंगी कहो नानक जिस पये कृपाल गुरपूरै ताके काटे जाल। गौड़ी गुआरी महला पंजवां तौ किरपा ते मार्ग पाईऐ प्रभ किरपा ते नाम ते आईऐ प्रभ किरपा ते बंधन छुटै।

नाम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिए कतहु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आगे।

भुक्ते मुक्ते सदा अलिपत जोग अर्जुगते दिस है सब मह सब ते रहते पार ब्रह्म का हुए ध्यान धरते संतन की महिमा कमन बखानो अगाध बोध किस मित नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी गुआरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत तू मेरी पत तू है मेरा गहना तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

भंडार, रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुरते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवा।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कह बाप ना माई, उन तेरा कह मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते,

सो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल, रहाउ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, जाकै वस खान सुल्तान, जाकै वस है सगल जहान, जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर ना ही कोई, कहो बेनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे दे निभाहे रहाउ, सब ते ऊच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार, सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी, जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे, संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अग्न निवारी, सतगुर भेट तहु मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराती, शीतल शांत गुरते प्रभ जाते, रहाउ संत प्रसाद जपै हर नाउ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाउ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह ए हमरी जिंद, किरपा निद किरपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, साध संग जपियो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताज अभमान पये निर्वैर, आठ पहर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी।

नाम। पार ब्रह्म स्यों लागी प्रीत, निर्मल करनी साची रीत। गुरपुरै मेटिया अंधियारा, नानक का प्रभ अपर अपारा। गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, जिस मन वसै तरै जन सोए। जाके कर्म प्राप्त होए, दुख रोग कछ पौ ना व्यापै। अमृत नाम हृदय हर जापै। पार ब्रह्म परमेश्वर त्याय।

जामी सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन।

पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस सियो मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस सियो नेह रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

ना मोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट ना आवे वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाई, सो एत खजाने लियार लाई, गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुर अपने कौ बलिहारे, छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जै, छोड़ मान हर चरण गही जै, कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवां, जानता मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रमता का भागी रहाव, जा कौ रस हर रस है आयो, सो अन रस नाही लपटायो, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जा का सब किस ताका होए, नानक ताको सदा सुख होए, गौड़ी महला पंजवां, जा कै दुख सुख सम कर जापे, ताको काड़ा कहां बियापे, सहज आनंद हर साधु माहे, आज्ञाकारी हर हर राय रहाओ, जा कै अचिंत वसै।

देव आद पुरुष अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निबलाई रहाउ भूमिया भूम ऊपर नित लुजै छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै कहो नानक एहो तत बीचारा बिन हर भजन नाही छुटकारा गौड़ी महला पंजवां पूरा मार्ग पूरा इशनान सब किश

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, करनहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाईए निदनामा, साध संग

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसाह जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवां, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत

राध भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवां कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारे सो जन रसना नाम उचारे हर बिसरत सहसा दुख व्यापे सिमरत नाम परम पौ

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

रात पूरे गुड़ काढ़े, जन्म जन्म के टूटे गांडे। कहो नानक तिस गुर बलिहारी, जिस भेटत गत पई हमारी। गौड़ी महला पंजवां, साध संग तां की सरनी परो, मन तन अपना आगै धरो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ। ताज अवमान जन्म मरण निवारो, हर के दास के चरण नमस्कारो। सास सास प्रभ मन संभाले, सो तन संचो जो चाले नाले। तिसह प्रापत जिस मस्तक भाग, कहो नानक ता की चरणी लाग। गौड़ी महला पंजवां, सूके हरे किए खिन माए, अमृत दृष्ट संच जीवाए। काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक कौ दीनी अपनी सेव रहाओ। मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा, कर दया सतगुर गुणतासा। दुख नाठे सुख आए समाए, ढील ना परी जा गुर फुरमाए। इच पुन्नी पूरे गुर मिले, नानक ते जन सुफल फले। गौड़ी महला पंजवां।

रहाओ। सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसे आथाओ। सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी। दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे। गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग। ओह बेला कहो हौ बल जाऊ, जित मेरा मन जपै हर नाऊ। रहाओ सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कारस, चरण पनीत चलह हर मार्ग। कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे। नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवां पै मह रचियो सब संसारा तिस भौ नाही जिस नाम आधारा भौ न व्यापै तेरी सरना जो तुद पावै सोई करना रहाओ सोग हरक मह आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रभ पाना अग्न सागर महाव्यापै माया ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाव, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कथा के अंतर जामी, करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा, हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिक देह बिगानी रहाओ, नाम बिना नाही मुख भाग, परत

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीजै, दास की तूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवां, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जाको नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निस्तारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाओ, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवां, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होवै परवान, गुरपार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर सिउं लिव लागी, गौड़ी महला पंजवां, करै दुख करम दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाणा रहाउ, अंतर बेख मुख अमृत सुनावे, जमपुर बाता चोटा खावे, अनक पड़दे मह कमावे विकार, खिन मह प्रगट होए संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल बिदाता, गौड़ी महला पंजवां, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाओ, संतह संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पहे निहाल, कहो नानक गुर पहे है दयाल, गौड़ी महला पंजवां, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाइह दिन राति, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द प्रमता का भागा, हर धन को वापारी पूरा, जिसे

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीव हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस सिंह आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लाग है कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुबा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जाने स्वान कहो नानक हम लूण हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मन लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहुजूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे तीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई।

अंधला पारी, दुख लागे राम नाम चितारी, तेरे दास को तू ही वडियाई, माया मगन नरक ले जाई रहा।

हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम। वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ। हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार। साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय। प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत। ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ। जा कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ। चरण कमल प्रभ हृदय निवास, सगल

रसायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाओ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निफल संसार अंधकूप।

कहो नानक सा कथनी सार, मान लेत जिस सिरजनहार। गौड़ी महला पंजवा, नित प्रत नावन राम सार की जय। झोल महारस हर अम

किल विख खोए, सिमरह साध करह आनंद, मन तन रबिया परमानंद, जिसह प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने, मोया उनते को वरसाने, सिमर गोविंद मन तन तुर लिखिया, काहू काज न आवत बिखिया, रहाउ बिखै ठगौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई, दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार, साध संग मिल दोए कुल साध, राम नाम नानक आराद, गौड़ी महला पंजवां, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी, पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार, अपने दास को रखनहार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोय, आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए, गौड़ी महला पंजवां, महजर झूठा की तुने आप, पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा, तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़ै अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवां, जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी, रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुद मंजाई, अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही, सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया भउ काल, मुकत भुगत जुगत हर नाउ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ, गौड़ी महला पंजवां।

पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावहु नित नीत, गई ब्याध उबरे जनमीत। मन बच क्रम प्रभ अपना त्याई, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखै मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर कौ जा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन बसेओ हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारी, नाम जपत नाम हृदय बिचारी, नानक कहो प्रभ कृपा तारी, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पार बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागन महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दई गुसाई मीतला, तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवा।

हाल। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से वड भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्रापत सो हर गुण गाहै। ताकी शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रभ दर्शन कहो हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा।

दास गौड़ी महला पंजवा हर पीखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चितवो दिन रैनी है कोई संत मलावे नेरा रहाओ सेवा करो दास दासन की अनक पांत तिस करो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दर्स सबो ही थोरा संत प्रसाद गाए गुण सागर जन्म जन्म को जात बोहोरा आनंद सुख पेटत हर नानक जन्म किरतार्थ सफल सवेरा राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन बिद मिले गुसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुख दाता मुहे मार्ग दे बताई रहाओ अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत इकत ग्रह बस्ते मिल बात ना करते पाई एक बस्त बिन पंच दोहेले वह बस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रहो तिन दिया ताला कुंजी गुर संपाई अनक अपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरनाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीतले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही

बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निध नाम निधान एक ठाई तौ बाहर कैठ जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्त तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सरै नारी।

राखहु राखनहारी, खेद करह और बहुत संताव है, आयुहु शरण तुहारी, कर कर हारियु अनक बहु भांति, छोड़ है कतहु नाही। एक बात सुन ताकि ओटा, साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते धीरज पाया, संति मंत दियो मोहे निरपहु, गुर का शब्द कमाया, जीत लये ओए महा बिखादी, सहज सुहिली बाणी, कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अबनासी राया, निरपौ संग तुम्हारे बस्ते, एहो डरन कहां।

प्रभु कृपाला राज जोबन अवध जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रवया निमक निमक नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागन आग्याकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला।

मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरी मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराती ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहि है प्रगट प्रभ होआ हन दिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधूरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमा ही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी पांते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किस तुम रह हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे को गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवा सहज समायु देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाउ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचर्ज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तिया अन भय ठहरायो मान आग्या सर्व सुख पाए दुखा ठाउ गवायो जो सो प्रसन्न भये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता कियो टगी जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ता को नाम जपी जैरे रहाओ मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख ओही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मैं करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी जिस भावे तिस

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजे नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद छोड़ गए बहुलोग भोग हैवर गैवर राज रंग त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है कहो नानक सदा हदूर है गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु सागर लहर संसार संसार गुरु बोहित पार ग्राम नो रहाओ कल कालख अंधियारिया गुरु ज्ञान दीपक उजियारिया बिख बिख्या पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है आगे तिल नहीं मानी है अहम बुद्ध कर्म कमावने ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली तू निर्गुण तू सरगुणी इहा उहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै परम मोह पहो साधी है रहाव वेद प्राण सिमरत पने सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहो मैं रही हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है
सास सास हर त्याय रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। संत प्रसाद हर जापीऐ, सो जन दुख ना व्यापीऐ। जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्न ते। नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिया एक नाम। इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। रहाओ कटिया तेरा अहंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया। हर हर नाम जा को गुर दिया, नानक तां का भौ गया। गौड़ी महला पंजवा, जा को बिसरै राम नाम, ताहू को पीर। साध संगत मिल हर रवहै, से गुणी गहीर। रहाव जा को गुरमुख हृदय बुध, ता कै कर तल नव निध सिद्ध। जो जान है हर प्रभ धनी, किस नाही ता कै कमी। करन हार पछानिया, सर्ब सुख रंग माणिया। हर धन जा कै ग्रह वसै, कहो नानक तिन संग दुख नसै। गौड़ी महला पंजवा, गर्भ बड़ो मूल इतनो, रहन नहीं गहो कितनो। रहाव बेबरजत बेद संतना, वाहू स्यों रे हितनो। हार जुआर जुआ बिदे, इंद्री वस लै जितनो। हरन परन संपूर्णा, चरण कमल रंग रितनो। नानक उदरे साध संग, किरपा निध मैं जितनो। गौड़ी महला पंजवा, मोहे दासरो ठाकर को, तान प्रभ का खाना। रहाओ ऐसो है रे खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा। काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा। सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह। रहाओ अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे। रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे। प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पही, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई। रहाओ दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख भय। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खय। कृपा निध प्रभ मया धार, नानक हर हर नाम लय। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए। जान दिन बिसरै प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए। रहाव एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए। ग्रह मंदर संपै जो दिसै, ज्यों तरवर की छाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए। पहरै बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए। निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए। जो होए कृपाल, ता सतगुर मेलै। सब सुख हर के नाए, मुक्त भया बंधन गुरु खोले। जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिय। रहाव जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइय। जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइय। मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटह,
सर्व सुखा सुख पाई सेव स्वामी सतगुर दाता मन बंचत फल आई है नाम इष्ट मीत सुत करता मन संग तुहारे चल है कर सेवा सतगुर अपने की गुरते पाई है पाल गुर कृपाल कृपा प्रभ धारी बिनसे सर्व अंदेसा नानक सुख पाया हर कीर्तन मिटियो सगल कलेशा राग गौड़ी महला पंजवां।

करो रे मन ना हो रे परे परे ही को लुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी है। अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी है। जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी है। गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो डंड धर हो।

कर कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस

केते बंद परे जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निरभय गौड़ी माला महला पंजवा भावन त्यागियो री त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रस मान गोबिंद आग्यो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पाग्यो संपत हरख न आपत दुखा रंग ठाकुर लाग्यो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टाग्यो निरपौ भये संत भ्रम डार्यो पूर्ण सर्वाग्यो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लाग्यो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जाग्यो जन नानक ओड़ तुहारी परयो आयो सरनाग्यो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लाग्यो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्ह कमानो जप तप कशु ना सादा दह दिस लै इह मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इह मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब एह कहां कमावन परया जब एह कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन एह रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिथे जप तप संयम कर्म कमाणे एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संयम मह रहता तिनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

नानक की बेनंती हर पह अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दीन दयाल दमोदर राया जीव, कोट जना कर से

ज्ञान दियो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुटे सब किश पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हर राम राम राम रामा, जप पूर्ण होए कामा रहा। राम गोबिंद जपेंदिया हुआ मुख पवित्र, हर जस सुनिए जिस ते सोई भाई मित्र। सब पदार्थ सब फला सर्व गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है जिस सिमरत दुख जाए। जिस लड़ लगे जीवी है भवजल पईए पार, मिल साधु संग उधार होए मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जस संत जना की रास, नानक उबरे नाम जप दर सच्चे साबास। गौड़ी बाज महला पंजवा।

सब फिक्किया तन मन फिक्का होय बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे औगण सब मटाए कह पर उपकार करे माल खजाना थे हो कर हर के

सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महल्ला नौवा साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहन सपा गो रहा सुख दुख दोनों

ज्ञानी नानक मुक्त ताहे तुम मानो एह बिद को जो प्राणी गौड़ी महला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यो हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुन गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मोह धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख ठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साद रहे बादंग अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए ना देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग देखिया जुआरी सब सुख मांगे नाम बिसारी रहाओ अदिष्ट दिसै।

सहज सुभाय गुरमति नाम हृदय वसाय साची बाणी हर गुण गाय तन मह साचो गुरमुख भाव नाम बिना नाही निज खाओ प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणे तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बनास दूजा

होई, तरन गगन नह देखो दोए, नारी पुरख सबाई लोए, रव सस देखो दीपक उजियाला, सर्व निरंतर प्रीतम बाला, कर कृपा मेरा चित लाया, सतगुर मोह को एक बुझाया, एक निरंजन गुरमुख जाता, दूजा मार शब्द पछाता, एको हुक्म वरतै सब लोई, एक सते सब उपत होई, राह धोवै खसम एको जान, गुर कै शब्द हुक्म पछान, सगल रूप वर्ण मन माही, कहो नानक एको सलाही, गौड़ी महला पहला, अध्यात्म कर्म करे ता साचा, मुक्त भेद क्या जाने काचा, ऐसा जोगी जुगत बीचारे, पंच मार साच उर तारे रहाओ, जिसके अंतर साच वसावे, जोग जुगत की कीमत पावे, राव सस एको ग्रह उद्यान, करनी कीर्त कर्म समान, एक शब्द एक भिख्या मांगे, ज्ञान ध्यान जुगत सच जागे, तै रच रहे ना बाहर जाए, कीमत कौन रहे लिव लाए, आपे मेले परम चुकाए, गुर प्रसाद परम पद पाए, गुर की सेवा शब्द विचार, हों मैं मारे करनी सार, जप तप संयम पाठ पुराण, कहो नानक अपरम परमान, गौड़ी महला पहला, खिमा गही व्रतशील संतोखं, रोग ना व्यापै ना जम दुखं।

0: पौ जोगी निरंजन त्यावे अण दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरा मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप करै पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पै रच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नरम केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ उन्नत जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाने
1: साचे शब्द दर निसाने
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवे न जावे चूके आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसे सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिले उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिले सुख होई दुख विसरे पावे सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी

परपंच ब्याद क्या गै कवरी, भाई मिले सच साचै साचरी, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाए मिले मन धोई, रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार, दुर्मत अगन जगत पर जारै, सो उबरै गुर शब्द बीचार।

हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस सेई बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन खाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बसार सह जम दुख रहाओ चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे वाजे तखत सलाम अदकी कृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे पाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट किसको वाह वाह जे वाट दिखावे किसको वाह वाह जे शब्द सुनावे किसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हौ मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हौ हौ करत नहीं सच पाईए हौ मैं जाए परम पद पाईए रहाओ हौ मैं कर राजे बहुतावह हौ मैं खपह जन्म मर आवह हौ मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावै निरपो कै घर ताड़ी लावे हौ हौ कर मरना क्या पावे पूरा गुर भेटे सो झगर चकावे जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हौ मैं बंधन बंद पवावे नानक राम भगत सुख पावे गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा काले घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी परम पलाया जो उपजै सो काल संघारिया।

जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाओ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते यो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै, गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत्व रोलै, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपहु अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार, जिन कै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन तरिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यों गाई को गोयली राख कर सारा, एहन सुपाल राख ले आत्म सुख तारा, इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा, जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा, तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा, किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा, जग बिन सत हम देखिया लोभे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा, निज कर महल अपार को अपरंपर सोई, बिन शब्द

वरी आकाश पताला गुरमत नाम ना विसर सहजे पत पाई है अंतर शब्द निदान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावे नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरी क्या तिन स्यो कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक की नय आपको, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजिया, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पी।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

हिरै अहंकारी, आप ना चीने बाजी हारी, कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोहे अत परम पलाई, बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई, नाम रते सदा बैरागी, गिरही अंतर साच लिवलागी, नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा, तिसते उपजे देव मोह पयासा, त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा, हम हर राखे सतगुरु मलाया, अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया, रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला, पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला, तापना चीन है बन है पांड पराला, मनमुख अज्ञान कुमारग पाए, हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए, पवजल डूबे दू जय पाए, माया का मोहताज पंडित कहावे, बिख्या राता बहुत दुख पावे, जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे, गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे, हो मैं दूजा शब्द जलावे, ना मेरा ते हर गुण गावे, माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए।

बताए, साच ना छपे जे को रखै छुपाए, ज्ञानी बूझ सहज सुपाए, गुरमुख साच रहिया लिभ लाए, हम मैं माया शब्द जलाए, मेरा प्रभ साचा मेल मलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए, धावत राख ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, आपे करता सृष्ट सिरज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूझै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करे सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा रहाओ, हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुणतास, दासन दास नित हो वह दास,

गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यो प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन भेदिया अस्थिर होई।

सोए नाम रतन सब जग महलोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी। हौं मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए। गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए। शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए। सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाईए गुणी निदान। रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए। मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए। गुर किरपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर किरपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार। त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार। त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए। सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मटाई। सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई। हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई। हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे। नानक गुण गावे हर अलख अपीवे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा। सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन। अन दिन बद्दे मारियन फिर वेला ना लहन। हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ। हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन। आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन। जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार। ओह क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार। नाम मिले है पत पाई है नाम मन्ने है सुख होए। सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए। सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन। तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन। एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए। जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए। सतगुर सेवन सो सोहणे हौं मैं मैल गवाए। शब्द रत्ते से निर्मले चलहै सतगुर पाए। हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए। जन नानक शरणागती ज्यों भावै तिवें छडाए। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले। एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए। गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए। मन करहला सतगुर पुरख त्या

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित न लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहो मन मह करत गुमाना तब इहो बावर फिरत बेगाना जब इहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहा जब किसको इहो जानस मंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इहो तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इहो होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्म करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कह संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन पन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागै, जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगाह सिजै, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ता कै आत्मै होए प्रगास, ऐसी दृढ़ता ता कै होए, जा को दया मया।

जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे हो आ साधु संग, सहज मिले हो पार ब्राह्मण संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे दुबदा तन की नासी, जा कै सह

सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै तार।

0: सर पर मरना, ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना, शिवपुरी का होएगा काला, त्रैगुण माया बिनस बिताला।
1: गिर तर धरन गगन अर तारी, राव सस पवन पावक नीरारी,
0: दिन सरैन बरत अर पेदा, सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा, तीरथ देव देहरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, तोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करे गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर्क अर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पासार दिसे पासारा, बिनस जाए गो सगल अकारा, सहज सिफत भगत तत ज्ञाना, सदा आनंद निहचल सच थाना, तहां संगत साध गुण रसे, अनपो नगर तहां सद वसे, तह पौ परमा सोग न चिंता, आवन जामन मृत ना होता, तह सदा आनंद अनहत अखारी, भगत वसह कीर्तन आधारी,
1: पार ब्रह्म का अंत न पार, कौन करे ता का विचार,
0: कहो नानक जिस कृपा करे, निश्चल थान साध संग तरे, गौड़ी महला पंजवा, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तिसह वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे, इसह मार राज जोग कमावे रहाव, जो इस मारे तिसको पहो नाही, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगाह सिजे, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जति, जो इस मारे तिस होवे गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निश्चल तनी, जो इस मारे सो वड भागा, जो इस मारे सो अन दिन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सोई सो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज त्यानी, इस मारी बिन थाए ना परे, कोट कर्म जाप तप करे, इस मारी बिन जन्म ना मिटे, इस मारी बिन जमते नहीं छुटे, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन झूठ ना धोई, इस मारी बिन सब किछ मैला, इस मारी बिन सब किछ जौला, जाको पये कृपाल कृपा निद, तिस पई खलासी होई सगल सिद, गुर दुबदा जाकी है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे ता सबको मीत, हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत, हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जा कै काम उतरे सब भूख, जा कै काम ना जो है दूत। जा कै काम तेरा वड गमर, जा कै काम होवे तू अमर।

कर पां की काल, ना को चतर ना ही को मूड़ा, ना को हीन ना ही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा। गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी, त्यों जीव है साकत नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मह जिया, कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाव। बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिस्ता महवास, बिन सिमरन पय कुकर काम, साकत बेसवा पूत नाम। बिन सिमरन जैसे सींग सतारा, बोलह कूर साकत मुख कारा, बिन सिमरन घर दब की न्याई, साकत थान पृष्ट फराई। बिन सिमरन कूकर हर काया, साकत लोभी बंद ना पाया, बिन सिमरन है आत्म काती, साकत नीच तिस कुल नहीं जाती, जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया, कहो नानक गुर जगत तराया। गौड़ी महला पंजवा, गुर कै बचन मोहे परम गत पाई, गुर पूरै मेरी पैज रखाई, गुर कै बचन त्यायो मोहे ना।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन गुर मोह को दीना जियो, अपना दस राय आपे मुल लियो, आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर को करी नमस्कार, काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहु नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असनेह।

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभु माता जीवन प्राण आधार मेरी रास प्रीत लाई कर हृदय निवास माया सिलक काटी गोपाल कर अपना लीनो नदर निहाल सिमर सिमर काटे सब रोग चरण ध्यान सर्व सुख भोग पूर्ण पुरख नव तन नित बाला हर अंतर बाहर संग रखवाला कहो नानक हर हर पद चीन सर्बस नाम भगत कौ दीन राग गौड़ी माज महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराऊं बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो जिस जपिए नाऊं सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ियो कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतियो जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह सोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजल करिय कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हूं मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किने गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निदो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहों ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दीपायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समर्थ संत उठायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्श हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के फूगा, इन संग अंद न जानी हौ संचो हौ खातता, सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझह समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन मह हुए गुमानी, ज्यों उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सखे पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे तरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन एकलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे भाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती तां फिर मुती सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामण सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवण मलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इओं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै पाए प्यारी गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद ना आवै जियो कापड़ तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाईऐ सदा सुहागण जा सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ गुर शब्दै मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी।

विचारी, गुर शब्द विचारे हमें मारी। इन बिद मिलो प्यारे, सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे, नानक कामना हर वर पाया।

कूड़ मुट्ठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जुए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, विचों होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू। नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी। मैं नैणी नींद न आवे जियो, भावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना भावे, मरिए हावे। बिन फिर क्यों सुख पाईए, गुर आगे करो बिनंती। जे गुर पावे ज्यो मिले तिवे मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो। हर कै सहज सुपाए, मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए। कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजै, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम यत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी। किस आगे जाए पुकारे, नानक मनमुख थाऊ ना पाए। बिन गुर अत प्यारे, मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो। फिर अगम अपारा, आपे मेल मिलिए जियो। आपे बख्शन हारा, अवगुण बख्शन हारा। कामन कंत प्यारा, कट कट रहे आसमाई। प्रेम प्रीत पाए भगती पाई है, सतगुर बूझ बुझाई। सदा आनंद रहे दिन राती, अन दिन रहे लिव लाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निध पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो। क्यों कर दुत्तर तरिया जाए, राम नाम कर बोहे था जियो। शब्द खेवट विच पाए, शब्द खेवट विच पाए। हर आप लंघाए, इन बिद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत प्राप्त होवै, जीवतियां इउं मरिए। जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी गत नहीं जानी, हम मैं तात संसारे। जो आया सो सब को जाती, उभरे गुर विचारे। गुरमुख होवे राम नाम बखाने, आप तरह कुल तारे। नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो।

सेवा सुरत भगत एह साची विचो आप गवाई हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे जुग जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए आपे गुण दाता अवगुण काटे हिरदय नाम वसाए नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए गौड़ी महला तीजा।

हर पाए, घर बैठिया हर पाए, सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए, गुर की सेवा खरी सुखाली, जिसनो आप कराए, नामो बीजे नामो जम्मे, नामो मन वसाए, नानक सच नाम वडियाई, पूरब लिखिया पाए, हर का नाम मीठा पिरा जियो, जा चाख चित लाए, रसना हर रस चाख मुइये जियो, अनरस साध गुआए, सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए, नाम त्याए सदा सुख पाए, नाम रहे लिवलाए, नामे उपजै नामे बिनसै, नामे सच समाए।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है घर मह, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दै आर, ठाकुर सदा कीर्तन गावहे। जह साध संत इकत्तर होवहे, तहां तुझे त्यावहे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप, चाल निराली। मोहन तू मान है एक जी, अवर सब राली। मान है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिये। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिये। कल मलै दहता शुद्ध करता, दिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। विसंबर देवन को एक है, सर्व करै प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किस। काल कंटक लोभ मोह नासै, जी जा कै प्रभ बसै। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंतै, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंतै, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत है, नानक जरा मरन पै नरक निवारै। पनीत करै तिस जंत है, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए। गीत गोविंद गाइयै, कल कलेश मिटै भ्रम नासै। मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम त्याइयै, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्श बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत्र नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, सलोक आप है किया कराया आप है करना जोग, नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी, ओ अंसाध सतगुर नमस्कारन आदि मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आप आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा।

ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत परो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थारन निर्गुण ते सरगुण दृष्टारन सगल पांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू पांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेह संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक धन तन कहां पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ सुरगना आछ अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाद अन कतै ना जाहू जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी सोए जाकै दृढ़ सो कहत सुनत कस जोग ना हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताकै ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा तारी सलोक आमने आए सृष्ट मह बिन बूझे पस ढोर नानक गुरमुख सो बुझे जा कै भाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोहयो मोहनी माया गर्भ कुंट मह उर्द तप करते सास सास सिमरत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवनहार मन है बिसराना तारो कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना ते मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर किरपा सतसंग मलाए नानक ताकै निकट ना माए सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपै पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपै लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वाका अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिख शोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मान बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत ताको भार अपार प्रीत।

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंगो हो क्या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वा महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता के। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यो, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मै मरना, ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। सलोक लाल गोपाल।

लवै न को एक है आप अवर नह हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीट हस्त मह पूर समाने प्रगट पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन ना महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन ना आया नानक हर कै दर्स समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

पर या भवजल करना यया जन्म न आवे सो एक नाम ले मन है परो यया जन्म न हारी है गुरपूरे की टेक नानक ते सुख पाया जां कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपूरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सत नाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खात शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म कीर्त की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिगसह अंध स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो हो सास सास जपनीत कहां बसासा देहे का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोबन नह बिरदी।

गई मूड तहां लपटाहि। गुर प्रसाद सिमरत रहै जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफलते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोई, आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही, नह हुआ नह होवना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना, नाम तत कल मह पुनः चरना। काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। श्लोक गण काले सब दिवस सास, नह बढ़न घटन तिल सार। जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार। पौड़ी गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन, अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आय कर कृपा जिह आप दुआय। गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जिह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया। श्लोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत, प्रगट भये आपै गोबिंद नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन उआ दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। श्लोक छाती शीतल मन सुखी, शंत गोबिंद गुण गाय। ऐसी कृपा करहु प्रभ नानक दास दसाए। पौड़ी छछा शोहरे दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे। छछा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करहु भगवंता। शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक जोर जुल्म फूलह घनो काची देह विकार, हम बुद्ध बंधन परे नानक नाम छुटार। पौड़ी जज्जा जान हो कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हो भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हो मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध। कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै उपाद। पौड़ी चज्जा चूरन मिटै तुमारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो। चूरत चूरत साकत मुआ, जा कैरदै होत पाओ बिया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो हो नानक नाम प्रीत। पवड़ी जन्या जानो दृढ़ सही, बिन सजात एह हेत। गणती गणो ना गण सको, ऊट सधारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिए संग। ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान तो सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न। अंधकूप ते तेह कढ़ो, जेह होवो सो परसन। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग। नानक ते उस्तत करो, याहू कियो संजोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए। नानक मनो ना बिसरै, गुण निध गोबिंद राय। पौड़ी
टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए, मन फन मुख ही है बस है, जो चाहो सो होए, टहल मैल ताको मिले, जाको साध कृपाल, साधु संगत तौ बस है, जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन, बिन नावे सुख नाही, तलह जाम के दूत ते, जो साधु संग समाहे, बार बार जाऊं संत सदके, नानक पाप बनासे कदके, सलोक, ठाक ना होती तिन्हों दर, जेह हो वो सो प्रसन्न, जो जन प्रभ अपने करे, नानक ते तन तन पौड़ी, ठठा मनुआ ठाह नाही, जो सगल त्याग एकै लपटाई, ठहक ठहक माया संग मुए, वाकै कुसल न कतहू हुए, ठांड परी संत है संग बसिया, अमृत नाम

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूटन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेहे आप जनाई नानक तेहे मत प्रगट।

जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दरग है तो सीजै पाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाऊ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है भाई।

देव सर्वत्र में ऊन न कतहु ठाए, अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी, ववा वैर न करिए काहू, घट घट अंतर ब्रह्म समाहु, वास देव जल थल में रविया, गुर प्रसाद विरले ही गविया, वैर विरोध मिटे ते मनते, हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते, वर्ण चेहन सगल है ते रहता, नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया, साकत मुग्ध अजान, रड़क मोए ज्यो त्रिखावन, नानक किरत कमान पौड़ी, राड़ा लाड़ मिटे संग साधु, कर्म तर्म तत नाम अराधु, रूड़ो जेहे बसे रिद माही, वा की राड़ मिटत बिन साही, राड़ करत साकत गावारा, जेहे ही है हम बुद बेकारा, राड़ा गुरमुख राड़ मटाई, निमख माही नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो, उकत सियान पत्याग, गुर दीखिया जेहे मन बसै, नानक मस्तक भाग पौड़ी, सस्सा शरण परे अबहारी, शास्त्र सिमरत वेद पुकारी, सोधत सोधत सोध बीचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सास सास हम भूलन हारे, तुम समरत अगनत अपारे, शरण परे की राख दयाला, नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पए, मन तन पए अरोग, नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी, खखा खरा सराहू ताहू, जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू, खरा निमा ना होत परानी, अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी, भावै खसम ता वा सुख देता, पार ब्रह्म ऐसो आगंता, असंख खते खिन बख्शन हारा, नानक साहिब सदा दयारा। सलोक सत कहो सुन मन मेरे, शरण पर हो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग, नानक लये समाए पौड़ी, सस्सा सियानप छाड़ इयाना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संग वड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट साज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझह प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन मुख

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे पूरा, कहां

दृढ़ कर्मन मन प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बात।

जिस जने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया, अगंत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतै अनद उलास, अपनी अमान कस बहुर साहले, अज्ञानी मन रोस करे, अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास ना होवे, जिसकी बसत तिसे आगे राखै, प्रभ की आज्ञा माने मातै, उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल, अनक

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यों जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया, मिथ्या राज जोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया भेख हस्ता, मिथ्या त्रोहो मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गमान, अस्थिर भगत साध की सरन, नानक जप जप जीवे हर के चरण, मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह, मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा, बिन बूझे मिथ्या सब भये, सफल देहे नानक हर हर नाम लय, बिरथी साकत की आर जा।

कछ अवरत मावत मन नहीं प्रीत मुखों गंध लावत जानन हार प्रभु परबीन बाहर भेख ना काहू पीन अवर अपदेश है।

चलते रहत, सब कछ जान आत्म की रहत, जिस पावै तिस लय लड़ लाई, थान थन अंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी, सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव, अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिए त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है, जेह प्रसाद सुख सेज सुइजै, मन आठ पहर तांका जस गावीजै, जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै, जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै, नानक पात सेती।

ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो हो, गुर प्रसाद नानक मन जागो हो, जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस पव को मूल।

ता साध जना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहूं धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हौ ताप, साधक्या संग तजै सबे आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहु तावे, साधक्या संग सदा सुख पावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजार सह, साधक्या संग बसै थानी उच्च, साधु कै संग महल पहुंच, साधक्या संग दृढ़ है सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधार है, साध संग साजन मीत।

देवा साधु कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्ब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेट होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध कै संग न बिरता जावे पार ब्रह्म साध बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाऊ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट दीठा साध संग भय आग्याकारी साध संग गत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जेता सुनह तेता बखियान है साध की उपमा तेहो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभ भेद ना पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर ना पेखै एकस बिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी कीना ब्रह्म ज्ञानी की सभी ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ज्ञानी ले धावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

कई कोट बन ब्रह्म है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब काब विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते का अंत ना पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड।

दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत के बेते सदा निहार है एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव है अमर पये सद सद ही जीव है कई कोट नाम गुण गाव है आत्म रस सुख सहज समाव है अपने जन को सास

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म लाम।

बड़ राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखै तिव ही रहै गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख गया।

कछ होए तब इसको सुख नाही कोए। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठ धावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृपतावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़ भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ का

अष्टपद संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाय संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखै ना कोय संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता उए भी गत पाए संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं डुलावे जिस प्रभ अपना

ਬਿਰਥਾ ਜਨ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

नानक सो जन सदा अरूग ज्यों मंदर को थम थम्मण त्यों गुर का शब्द मने अस्थम्मण ज्यों पाखाण नाव चढ़तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै।

संग मिल जोत प्रगटावे, इन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार, जो कछ करे सोई सुखमान, भूला काहे फिर है अजान, कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताज अभमान ले।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहि सगल दे।

चलत करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए, नाना विद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाम, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवण,

पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरख सब माहि समाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसह बुझाए तिसह सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश सत नित बूझै जे कोय नाम जपत ता की गत होय आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करनै हार अवर ना बूझ करत बिचार करते की मित ना जानै किया नानक जोत सुभावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भये बिस्माद जिन बूझिया किसे आया स्वाद प्रभ कै रंग रात जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे वे दाते दुख काटन हार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी।

आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पीखनहार नाम सत सत ध्यानहार आप सत सत सबधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रवक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार को।

नानक जिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उच्चरै।

बल जाओ। सर्व निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म मैं जन, जन मैं पार ब्रह्म, ये कह आप नहीं कछ भरम। सहस सियान पलया ना जाइय, नानक ऐसा गुर बद भागी पाइय। सफल दर्शन पेखत पनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। पेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगाह गवे। सुन कर बचन करन आगहने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर अखयो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पेखा हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावे तिस लये मलाए। जिहवा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण विवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने ना पाई। अनक भगत बंधन नित करह, चरण कमल हृदय सिमरह। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। एहो हर रस पावे जन कोई, अमृत पीवे अमर सो होए। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। मोह माया कै संग ना लेप, मन मह राखै हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे, नानक परम मोह दुख तह ते नासे। तपत माहे ठांड वरताई, आनंद भया दुख नाठे पहाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेसे। पहु चूका निरपौ होए बसे, सगल ब्याध मन ते खै नसे। जिसका साथ इन कृपा धारी, साध संग जप नाम मरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन, सुन नानक हर हर जस श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अपने चरित प्रभ आप बना।

ओत पोत रविया रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत इहो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस धन को चार कुंट उठ धावह तो धन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निदान मह हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बोध हो हर कह नाए।

नाम, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, चित कर जाए बसै अबनासी।

देव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदहार हर हर सिमर प्राण अधार अनक अपावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद बिचारे हर की भगत करहु मन लाए मन बंछत नानक फल पाए।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम सम्हाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावह सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप, अनक विस्थार एक ते भये, एक अराध परासत गए, मन तन अंतर एक प्रभ राता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत

आधार जो जो जपै सो हुए पनीत भगत भाए लावे मन हीत हम निर्गुण आर नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मुख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सो बातनवंत।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कह ते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई, जह सर्व कला आपह प्रवीन, तह वेद कतेव कहां को चीन, जब आपन आप आप उरतारै।

आपह तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुलै ज्यो बलाव हो त्यो नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार नानक एको पसरिया दूजा कह दिसतार अष्टपदी आप कथ आप सुनने हार आप एक आप विस्थार जान तिस भावै तां सृष्टि अपाई आप

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ निद

देखन सब ब्रह्म संत जना कह हृदय सब धर्म संत जना सुनह शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रह सत बचन साधु सब कह जो जो होए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बार पी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावै ता करे विस्थार तिस भावै ता एकंकार अनक कला लखी नह जाय जिस भावै तिस लये मलाय कवन निकट कवन कहिया दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए।

किन्हें कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच तारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख होए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह स्वभाव।

आस अनित त्यागुह तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के पर लेहो भंडार नानक गुरपुरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उदा

दीन दयाल दुख भजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरन ही आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर भये सबरेन अमृत नाम साध संग लै।

प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में।

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै।

नानक संत निर्मल पए जिन मन वसया सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फाल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रमतो घणो सदा संगारै नीच हरख सोग।

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

बिनस अमर तरस रंग रत्ते निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक सादर वाल। सलोक पंच बकार मन में बसे राचे माया संग साध संग हुए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसम बास बहुरंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदेओ अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच। सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारा वार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यों बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिन सेव पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए। सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी एकस स्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

संसारिय नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बसे।

अंत मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत टहल कमाइय नानक यो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पावे। एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम। मन संतोख सर्ब जी दया, इन बिद वर्त संपूर्ण भया। धावत मन राखे एक ठाए, मन तन शुद्ध।

बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान हर की भगत करो ताजमान हर अमृत पान करो साध संग मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग कोमल बाणी सब कौ संतोख है पंच भू आत्मा हर नाम रस पोख है गुर पूरे ते एह निश्चौ पाइय नानक।

राम पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। श्लोक चार कुंट

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पहचान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संत।

हो मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटंब सियो गुण गोविंद प्रभ रमन हर की टहल कमावनी जपिए प्रभ का नाम गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़े सुआया नानक होत ना।

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई शरण जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक।

हा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार होमे मैल बिख उतरे हर अमृत हर उरतार सब कार्य तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहेब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई।

मनमुख अहंकार सलाहंदे हम मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरह खप जावे सब अपवाद जन नानक गुरमुख उपरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम त्याई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिन्नी तू एक मन सच त्याया तिनका सब दुख गवाया।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर हो मैं रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियो, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू बड़ी है, तुद जे वड होए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सुदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत कड़ी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनों दया सदा हुए सतगुरु अंदरों निर्वैर है सब देख ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाए दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब भावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

मुख दारे उजले जिन हर हिरदय सच्चा भावे कूड़े आर पछाह सटियन कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावे मुह काले कूड़े आरिया कूड़े आर कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए गुरसिखी अमृत बीजिया तिने अमृत फल हर पाए ओना हलत पलत मुख उजले ओए हर दरगहा सची पैनाए जिकना अंदर खोट नित खोट कमावे है ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए जां सतगुर सराफ।

आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाय। महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत होवै साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए।

पाज लह जाए जिस होवे पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिले प्रभ आए ज्यों लोहा पारस भेटिया मिल संगत स्वर्ण होए जाए जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों पावे तिवें चलाए पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया तिन हर आप मलाए गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो अन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम हर नामे ही त्रिपतावे हर नाम तान हर नाम देवान हर नामो रख करावे जो चेत लाए पूजे गुरमूरत सो मन इच्छे फल पावे जो निंदा करे सतगुर पूरे की तिस करता मार दिवावे फिर ओह वेला ओस हथ न आवे ओह अपना बीजिया आपे खावे नरक भोर मुहे काले खड़िया ज्यों तस्कर पाए गलावे फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जां हर हर नाम त्यावे हर बाता या

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वो आपे सच्चै वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवेराइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखे ओ आप वरतै अपनी।

हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करहे साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करहे रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़ै सुआया कोई निंदक वड्याई देख ना सकै सो करते आप पचाया जन नानक गुण बोले करते के भगता नो सदा रखदा आया पौड़ी तू साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस ना आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएंदे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चै पिछों दे आख्या कम ना आवै अध विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावै जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै ता अपिहो पीवै शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावै सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावै महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावै उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावै उपदेश गुरु हर हर जप जापै सब किल विख पाप दोख लह जावै फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावै जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावै जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावै पौड़ी जो तुद सच त्याईंदे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाए पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइए विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वेमुख वेमुख नो पाया पास ना दे कोई बहन जगत मह गुहू पर सगवी मल लाए मनमुख।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहियां पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करै माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर विचारे सब पाप जगतै का तिन सिर लया ओस अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोइने नो ओह हाथ पाए आखेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विक पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याई दे सच सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिनी गुरमुख सा लाहिया सच शब्द निशान सच जे सच्चे सेवंदे तिन वारी सद कुर्बान श्लोक

सच साहा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै, गुण कथ है निरारे, सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके ओस

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुर गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वडियाई वेख ना सकनी ओना अगै पिछै थां नाही जो सतगुर मारे।

नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही। नावै की वडियाई वड्डी है नित सवाई चढ़ै चढ़ाही। महला चौथा गेहूं दै गुरु बह टिकिया तिस जन की वडियाई वड्डी होई। तिस को जगत निमया सब पैरी पया जस वर्त्या लोई। तिस को खंड ब्रह्मांड नमस्कार करह जिसकै मस्तक हाथ धरिया गुर पूरै सो पूरा होई। गुर की वडियाई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई। जन नानक हर करतै आप बह टिकिया आपे पैज रखै प्रभ सोई। पौड़ी काया कोट अपार है अंदर हथ नाले गुरमुख सौदा जो करे हर

रह है जिन हर बसिया मन माहे हर दरगह ते मुखी उजले तिन को सब देखन जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिन को भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरपूरा करी वसाए सी जिने अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखन को हर आप होए होर केती झक झक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन।

या मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जान सूलिया, हर जान है से बिरहो। हौ तिन बिटो साध घुम घोलिया, हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन बिटो तल रोलिया। जो सिख गुर कार कमाव है हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते तिन भिन्नी हर रंग।

त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल हों मैं कड़ै धोए सच मणंज है रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वस्से सच सच्चा हर रखवाली।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन जन है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासों तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुरसिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिख्या बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाहा है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सत्यारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जां गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै चुन कड्डे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन पे डारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे

की मन भुख है, मन तृप्त है हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाइया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वडियाईया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाईया, जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया। सच गुरमुख जिनी सलाहया, तिना भुखा सब गवाईया।

जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला। गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी तू करता सब किस जानदा, जो जिया अंदर वरतै। तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणतै। तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुरु नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है। गुरमुख लाइय चित, क्यों सास ग्रास वसारी है। बहंदियां उठदियां नित, मरण जीवन की चिंता गई। एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू। जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने। खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे। क्यों कर दरगाह सीजै।

सफल है। जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने। अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने। जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने। एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाउ। हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाउ। ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए। सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय। सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा सेवक सच्चे शाह के से परवान दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए राम नाम धन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवा नारायण लया न ठूंगड़ा पैर किथे रखे करदा पाप अमित्या नित विसो चखे निंदा करदा पच मोआ विच देही पखे। सच्चे साहिब मारिया कौन किसनो रखे नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखे। श्लोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणे किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम। महला पंजवा अवखद सबे कीते अन।

संग जोट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या लए नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सभा सुन लगे।

कम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यों पावे त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध। गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उप

आन तनंतर राव रहया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाणा नानक प्रभ शरणागति साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी

नानक नाल न चलनी जल बल होए शार पौड़ी से ही उबरे जग विच जो सच्चा रखे मोहे डिठे तिन कै जीविए हर अमृत चखे काम क्रोध लोभ मोह संग साधा पखे कर कृपा प्रभ अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी को सकै ना लखे श्लोक महला पंजवां नानक सोई दिन सुहावड़ा जित प्रभ आवै चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फित पलेरी रुत महला पंजवां नानक मित्राई तिस सिउ सब किस जिस कै हाथ कमित्रां से कांडिय है एक विख ना चलह साथ पौड़ी अमृत नाम निधान है मिल पीवो पाई जिस सिमरत सुख पाई है सब तिखा बुझाई कर सेवा पार ब्रह्म गुर भुख रह ना काई सगल मनोरथ पुन्या अमरा पद पाई तुद जेवड़ तू है पार ब्रह्म नानक सरनाई श्लोक महला पंजवा दिथड़ो हब ठाए ऊन ना काई जाए नानक लद्दा तिन सुआओ जिन्ना सतगुर भेटिया महला पंजवा दामनी चमत्कार त्यों वरतारा जग खे वत सुहावी साए नानक नाओ जपंदो तिस धनी पौड़ी सिमरत शास्त्र सोध सब किनै कीम ना जानी जो जन भेटै साध संग सो हर रंग माणी सच नाम करता पुरख एहे रतना खाणी मस्तक होवै लिखिया हर सिमर प्राणी तो साधिचै सच नाम नानक मेहमानी श्लोक महला पंजवा अंतर चिंता नैणी सुखी मूल ना उतरै भुख।

ना लद्या नानक से साबास जिनी गुर मिल एक पछाणिया पौड़ी जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा ओए सेवन समर्थ अपना बिनसै सब मंदा पतत उदारन पार ब्रह्म संत वेद कहंदा भगत वचल तेरा बिरद है जुग जुग वर्तंदा नानक जाचै एक नाम मन तन पावंदा श्लोक महला पंजवा चिड़ी चौंकी पहों फुटी वगन बहुत तरंग अचरज रूप संतन रचे नानक नाम है रंग।

हथे पैर भौंदा फिरे खामन संधड़ै सूल दोजक पौंदा क्यों रहे जा चेतना होए रसूल पौड़ी तिसै सरे वो प्राणी हो जिसदा नाव पल्लै ऐसै रहो सहेलिया अगे नाल चलै घर बंद हो सच धर्म का गड थम अहलै ओट लै हो नारायण दीन दुनिया चलै नानक पकड़े चरण हर किस दरगाह मल्लै श्लोक महला पंजवां जाचक मंगै दान दे प्यारिया देवन हार दा तार मैं नित चितारिया नखोट न जाई मूल अतुल भंडारिया नानक शब्द

यूजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीव्या मन अंदर धरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखा का होए नाश नानक नाम अरादै कारज आवै रास महला पंजवा जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी।

साध आया तिन हरजना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै उठा एक निरंजन राव रहिया पाओ दुइया कुठा हर नानक मंगै जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। श्लोक महला पंजवां जा चढ़ी सा सार जो जा चंदी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी विहूणिया। महला पंजवां नीह जे विद्धा मन पछाणु विरलो थियो जोड़ नहारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दस्या जपिया गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

एक जिस तो सदैव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवां पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सफाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवां जीवन पद निर्वाण।

तन रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

तन फटन जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ वड्डा है।

आज तब जानोगे जब उगरे गोपाज। कहो कबीर पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जो पाई जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं चीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गई आकाई। बिंद राख जो तरिय पाई, खुसरे क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पाव है कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ। पर हर लोभ अरलोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की करही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहाओ। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म बीचार है, तो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया। जस जंती में

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हो मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाऊ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपि ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपथ कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर।

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया शांत भई जब गोविंद जानिया रहाउ तन मह होती कोट अपाद उल्ट भई सुख सहज।

राम भगत निज भागी गौड़ी कबीर जी जिह मरना सब जगत तरासिया सो मरना गुर शब्द परगासिया अब कैसे मरूं मरन मन मानिया मर मर जाके जिन राम ना जाने।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार। पंडित देखो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदै स्नेह। जब लग रात तब लग नहीं नेहो। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन धन।

चौड़ कत बोड़ी हर सिंह तोड़ बिख्या संग जोड़ी रहाओ तुर नर दादे लागी आग निकट नीर पास पीवस ना झाग चेतत चेतत निकस्यो नीर तो जल निर्मल कथक कबीर गौड़ी कबीर जी जेहे कुल पूतना ज्ञान बीचारी विधवा कसना पई महतारी जेहे नार राम भगत नह साधी जनमत कसना मुह अपराधी रहाव मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया।

का नाम। इनके सद बलिहार है जाओ, सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन पावे रहाओ। जेहे कट राम रहया भरपूर, इनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कही है सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान भी चारा रहाउ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहु मनह व्यापी मनह मार कवन सिद्ध थापी।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरे काहे होए हान नटवट खेलै।

कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अधारा रहाउ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन मह।

जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार रे अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पहे लिव लागे रहाओ, साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तार तारे।

आऊ कौन को पुरख कौन की नारी या तत लेहो शरीर बिचारी कह कबीर ठग स्यो मन मानिया गई ठगौरी ठग पहचानिया अब मोको भय राजा राम सहाई जन्म मरण कट परम गत पाई रहाऊ साधु संगत दियो रलाई पंच दूत ते लियो छड़ाई अमृत नाम जपो जप रसना।

आधार जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी जत पेखो ताते अंतर जामी अपनी भगत आप ही दृढ़ाई पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओ

अवरण हूखो वह आग लगाए मंदर में सो वह अवरण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर लजाने राग गौड़ी बैरागन कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने को मुए श्राद कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया, दिखिया स्यों लपटाना गौड़ी, जीवत मरै मरै फुन जीवै, ऐसे सुन समाया, अंजन माहे निरंजन रही है, बहुड़ ना पवजल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआया स्थिर राखो, इन बेद अमृत पियोई है रहाओ, गुर कै बाण बजर कल छेदी, प्रगटिया पद परगासा, सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका, निहचल शिव कर बासा, तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एहो जग बेदिया भाई, दह दिस बूढ़ी पवन चलावै, जोर रही लिवलाई, उन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी, कहो कबीर अनभव एक देखिया, राम नाम लिवलागी, गौड़ी बैरागण तिप दे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे, सुरत सुन अनरागी, आवै ना जाए मरै ना जीवै, तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना, गुर प्रसाद अकल पही अवरै, नातर था बेगाना रहाउ, निवरै दूर दूर फुन निवरै, जिन जैसा कर मानिया, अलौती का जै

हल्की लगे ना भारी रहाउ। अर्द उर्द दो तह नाही, रात दिन सतह नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही। सतगुर तहां समाही, अगम अगो

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानी।

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पल मीठा अवरना दूजा भाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी ए कह है सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जाप है जाओ आप छुटकावन ते

किस नाही पांच तात तह नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगण कत जाही तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोलत कहां समाई ए संसा मोह को अन दिन व्यापै मोह को ना कह समझाई रहाओ जह बर भंड पिंड तह नाही रचनहार तह नाही जोड़ नहारू सदा अतीता ए कहिए किस माही जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे जब लग हुए।

रहाव। खंड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोल ना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनिय तोल ना तुलिये, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

रतन संगाने काष्ट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस विखै बाच हर्राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परिया मन बौरारे नाचियो घर कर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया एहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नामन को तीर्थ कर

गौड़ी अग्न ना दहै पवन नहीं मगनै तस कर नीर ना आवै राम नाम धन कर संचौनी सो धन कत ही ना जावै हमरा धन माधो गोविंद धरनी धर यह सार धन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज ना लही है रहाउ इस धन कारण शिव सन कादिक खोजत भय उदासी मन मुकंद जिहवा नारायण परे ना जम की फासी निज धन ज्ञान भगत गुरदीनी तास समत मन लागा जलत अंब थंब मन धावत परम बंधन पहु भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट असव हसती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुभद ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कहीं ना सच रहे ओ रहाओ ज्यों उद्यान कुसम पर फुल्लत किन्ह ना कराओ लयो तैसे भ्रमत अनेक जोन मह फिर काल हयो या धन जोगुन अर सुत दारा देखन कौ जो दयो तिन ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चहु दिस ठाट ठयो कह कबीर पै सागर तरन को मैं सतगुर ओट लयो।

तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाउ। इस माटी मह पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी। गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ। जां तिस पावै ता हुक्म मनावै, इस बेड़े को पार लंघावै। गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी। कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी। गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो। जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता। तव जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो। अब के छुटके ठोर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी। आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइए जाते पाइए परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संजमो क्या व्रत क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखिए विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विद निरतिया सो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक।

रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले उस

जीवन पद कारण हर की भगत करीजै एक आधार नाम नारायण हरसना राम रवीजै राग गौड़ी ग्यारवां आस पास घन तुरसी।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह या माया के डांडे सूर के सनमुख रन ते डरपै सती के सांचे भांडे डगमग छाड रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदौरा रहाऊ काम

गौड़ी लाख चौरासी जी जोन मह प्रमत नंद बहु ठाकोरे भगत हेत अवतार लियो है भाग बडो बपरा कोरे तुम जो कहत हो नंद को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब इहो नंद।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उदार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निर्भउ तरन तारन राम राया रहाउ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पांच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पति आरा चेत सुचेत चेत होए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली बस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा न रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एकै एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

कतह ना जाई, अगह गह गह गगन रहाई, कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह ना होई, तां घट माही घाट जो पावा, सो घट छाड अब घट कत तावा, नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह, चचा रचत चित्र है भारी, तज चित्रै चेतोह चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, तज चित्रै चित्राख चितेरा, सच्चा एह शत्रपत पासा, शक के ना रहो छाड के ना आसा, रे मन मैं तो सिन सिन समझावा, ताहे शाड कत आप बंधावा।

सूरज नहीं जाना, रहियो झजक नाही परवाना, कत झक झक और न समझावा, झगर किए झगरो ही पावा, नन्या निकट सो घट रहे हो, दूर कहां तज जाए, जां कारण जग ढूंढियो, नेरो पायो ताहे, तटा बिकट काट घट माही, खोल कपाट महल के ना जाही।

या तीरा जिन ठग ठगिया सगल जग खावा सो ठग ठगिया ठौर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे आसमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे न डर हुआ डर उर होए भागे टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

बसेरा, अर्दह उर्दह मांझ बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यों परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूलह फल हुई,

बिंद मलावा, बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंद को होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पव पान भरोसो आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद भूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पया ते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिलया ना कोई।

जैया जौ जान तो दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार।

होए एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोय। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भव जल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एहे त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजहू नह चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सक्या ना अखर एक पछान, सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सुअन पै रह, पंडित लोग कहो व्यवहार, ज्ञान

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं थिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिश तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचर्ज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगंबखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मजार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान कतनी।

सुख सागर महरम है कबीर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गाव। गुरगम भेद सुहर का पाऊ रहाउ, आदत करे भगत आरंभ। काया मंदर मनसा थंभ, अहनिस अखंड सुर ही जाय। तौ अनहद बीन सहज महबाई, सोमवार सस अमृत चरै।

माहि, ऐनस कसमल तो वह नाहि, सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै, अन दिन आप आप स्यो लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट ना पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभ जान, रमत राम सिंह।

जीवों की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गन का बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले करन बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उगर सैन कौ राज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

रे मोसो को न कह समझाए जाते आवागमन बिलाय रहाव बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जे साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर्व होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट हुन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह।

पंडित पढ़े रिथीश्वर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग माछ पयाले गावन तुदनो।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिनका भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई।

चित्त तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वस्सै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का भाऊ

कहिया सर्ब निरंतर रब रहिया नाल कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या बड़ा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन।

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिया सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करहे तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै।

आप सवारी होरन कार्ज ना हुई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई भणत नानक, सबना का पिर एको सोए, जिसनो नदर करे सा सुहागण होए, आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई, दुर्मत गत पई कीरत थाए, सच पौड़ी साचो मुख नाव, सतगुर सेव पाए निज थाव, मन चूरे खट दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाव, अधिक त्यास भेख बहु करे, दुख बिखिया सुख तन पर हरे, काम क्रोध अंतर तन हिरे, दुबदा छोड़ नाम निस्तरे, सिफत सलाहन

संग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन नाल।

जात पात सच नाव, कर्म धर्म संयम सत भाव, नानक बख्शे पूछ ना होए, दूजा मेटे एको सो होए। आसा महला पहला, एक आव है एक जाव है आई, एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठौर ना पाव है, से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है, गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बेख वत अत भौजल,

चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हौ बलिहार ता कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाउ दरगाह बैसन हुए थाउ जा तुद भावे ता दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक भवजल तरे आसा महला पहला पंचपदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाउ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

ते सब तेरे बिन सेवा फल किसै नाही दुख सुख भाणा तेरा होवै बिन नावै जीओ रहै नाही मत विच मरण जीवन होर कैसा जां जीवां तां जुगत नाही।

पाया, नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया। आसा महला पहला, सेवक दास भगत जन सोई, ठाकुर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फुन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना।

सो प्रगट जाय। सच निशान ठाक न पाय, पंडित पढ़ै बखाण है वेद, अंतर वसत ना जान है भेद, गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखाणी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी, नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहा गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली, उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै, बिन हर गुर पार न पाई। तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है, जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ। सास बुरी घर वास ना देवै, फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेमो, हर गुर कृपा ते नदर धरी। आप विचार मार मन देखिया, तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यो तू राख है तिव ही रहना, दुख सुख देव है करह सोई। आसा मनसा धू विनाशक, त्रिहो गुण आस नरास भई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई, संत सभा की ओट लही। ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता, गुरमत पाई सहज सेवा। आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोए पूत न कल्पे माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरे पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटे ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हौ पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवहो जो उपजै सो अलख अपेवहो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत बिरड़ाई सगली सौदी टोटा आवे नानक राम नाम मन भावे आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी।

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगे।

पहला दो पदे तित सरवरड पहले नवासा पानी पावक तिनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डुबियले मन एक न चेत समूर मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हों जती सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेश अनेक जय कर करते कीरत होए।

इस एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ कर है सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राख है मान जा पत लेख ना पवै ता सब नराफल काम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंधो अंधा रहाओ लख खटिए है लख संजिए है खाज है लख आव है लख जाए जा पत लिख है ना पवै ता जी किथे फिर पाए लख सासत समझावनी लख पंडित पढ़ है पुराण जा पत लिख है ना पवै ता सबे को परवान सच नाम पत उपजै कर्म नाम करतार अहलस हृदय जी वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को पकड़ पाए।

आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावन ता फीए जा एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीश का कबहू न खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

हाव घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पाए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाऊ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रुद

ताया तिस क्या कही है भाई, जो किस करना सो कर रहया, कीते क्या चतराई, तेरा हुक्म भला तुद भावै, नानक तां को मिलै वडाई, साचे नाम समावै रहाउ, किरत पया परवाना लिखिया, बहुड़ हुक्म ना होई, जैसा लिखिया तैसा पढ़िया, मेट ना सकै कोई, जे को दरगहा बहुता बोलै, नाओ पवै बाजारी, सतरंज बाजारी।

गुर का शब्द मने मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निद पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम तंत मह जोगं अमृत नाम निरंजन पाया ज्ञान काया रस भोगं रहाऊ शिव नगरी मह आसन बैसो कल्प त्यागी बादम सिंही शब्द सदा धुन सोहै एनस पूरै नादम पत विचार ज्ञान मत डंडा वर्तमान बेभूतम हर कीरत रह रास हमारी गुरमुख पंथ अतीतं सगली जोत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन पर थर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाईऐ पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चुआईऐ बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का वापारी होवै क्या मद छूछै भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवै मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जुए जन्म ना हारै कहो नानक सुन पर थर जोगी खीवा अमृत धारै आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपै दोष न दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द न आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस न होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

सदा सुख होए। गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर कै शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगै ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआई। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई,

आए, हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरंपर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरै पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगाह मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाकै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोई, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस जुग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाऊ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा,

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम पुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गवाई।

पाखंड वकार रहाउ। सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे। सेज सुखाली अन दिन हर गावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर धार। नेड़े वेखे सदा हदूर।

पछान गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार गुर का शब्द सहज विचार गुरमुख भगत जुगत सच सोए पाखंड भगत निरत दुख होए एहा भगत जन जीवत मरे गुर प्रसादी भवजल तरे गुर कै बचन भगत थाए पाए हर जियो आप वसै मन आए हर कृपा करे सतगुरु मलाए निश्चल भगत हर सियों चित लाए भगत रत्ते तिन सच्ची सोए नानक नाम रत्ते सुख होए आसा घर अठवां काफी महला तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर कै भाणे सतगुर मिले सच सूझी होई गुर प्रसादी मन वसै हर बूझै सोई मैं सहो दाता एक है अवर नाही कोई गुर कृपा ते मन वसै ता सदा सुख होई रहाउ इस जुग में निरपो हर नाम है पाईए गुर विचार बिन नामे जम कै वस है मन मुख अंध गुआर हर कै भाणे जन सेवा करै बूझै सच सोई हर कै भाणे सलाहिए भाणे मने सुख होई हर कै भाणे जन्म पदार्थ पाया मत उत्तम होई नानक नाम सलाहे तू गुरमुख गत होई आसा।

जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा घर दूजा महला चौथा। किस ही धड़ा किया मित्र सुत नाल भाई, किस ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही धड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सुआई। हमारा धड़ा हर रहया समाई, हम हर स्यों धड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख धड़ा अवर न कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यों धड़े करह से जाहे, झूठ धड़े कर पछो ताहे। थिर न रह मन खोट कमाहे, हम हर स्यों धड़ा किया जिसका।

माया मल तारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़िए।

गुरमुख परगासा नाम बिना मैं धर नहीं काई नाम रविया सब सास ग्रासा रहा नाम मैं सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवे हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई।

जोगी तो तरवाजै बेन गुरमत हर गुण बोलो जोगी एह मनुआ हर रंग पेन जोगी हर देहो मत्ती उपदेश जुग जुग हर हर एको वरतै तिस आगे हम आदेश रहाऊ गाव है राग भांत बहु बोल है यह मनुआ खेलै खेल जो वह कूप सिंचन को बसधा उठ बैल गए चर बेल काया नगर मह कर्म हर बोव हो हर जामै हरिया खेत मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

खिन लागे हम तब लग समारो नाम। मेरा मन ऐसी भगत बन आई हम हर बिन खिन पल रह ना सको। जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा कब को मेले पंच सत गायन। कब को राग धुन उठावे मेलत चुनत खिन पल चसा लागे। तब लग मेरा मन राम गुण गावे तब को नाचे पाम पसारे। कब को हाथ पसारे हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागे। तब लग मेरा मन राम समारे कब को लोगन को पते आवे। लोक पतीने ना पत होए जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो। ता जय जय करे सब कोई आसा महला चौथा। सत संगत मिली है हर साधु मिल संगत हर गुण गाए। ज्ञान रतन बलिया घट चानन अज्ञान अंधेरा जाए। हर जन नाच हो हर हर त्याए ऐसे संत मिले है मेरे भाई। हम जन के तो वह पाए रहाओ हर हर नाम जप हो मन मेरे। अन दिन हर लिव लाए जो इच्छो हो सोई फल पाव हो। फिर भूख ना लागे आए आपे हर अपरंपर करता हर आपे बोल बुलाए। से संत भले तुद पावे है जिनकी पत पावे है थाए। नानक आख ना राजे हर गुण ज्यों आखे त्यों सुख पाए। भगत भंडार दिए हरे अपने गुण गाहक वणज लै जाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा। आया मन तुरा हो हम मैं रोई है गुरमुख नाम त्याए अस्थिर हुई है। गुरपुरे साबास चलन जानिया लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया। रहाओ पूर्व लिखे देहे से आए माया चलन अज के कल तुरहु फुरमाया। बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया जुए खेलन जग के इहो मन हारिया। जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया नानक सच्चे सच सच समाया। आसा महला चौथा जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया। गुर प्रसादी भुज सच समाया जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया। दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाउ अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ। अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ। हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ नानक आपे आप खुआईऐ। गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ राग असावरी घर सोलवा के दो महला चौथा। सोधन एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं। सतगुर मोको हर नाम बताया हम हर बिन खिन पल रह ना सको। रहाउ हमरे सरवण सिमरन हर कीर्तन हम हर बिन रह ना सको। हम एक खिन जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके तैसे हर जन क्यों।

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान सावरी महला चौथा माई मोरो प्रीतम राम बताव होरी माई कौ हर बिन खिन पल रह ना सकू जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख शरण जगदीश्वर प्यारे मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठाली तिस भउ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी ही तिन हुए ना आपै। एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे। तप करते तपसी पुलाय, पंडित मोहे लोभ सवाय। त्रै गुण मोहे मोहया आकाश, हम सतगुर राखे देख।

माना कर मस्तक धार राखियो कर अपना क्या जान है एह लोग अजाना रहाव सुहाग हमारो अब हुन सोहयो कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान सद कुचियां सदा रंग माने नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने कहो नानक जोह पिरह सिंगारी थिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना

जानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े निश्चल साध।

तू पाए। सहज धुन गावे मंगल मनुआ, अब तां को फुन काल ना खाए। करन कारण समरथ हमारी,

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए।

ना मोआ होए तिस निश्चल रहना। जीवत मोए मोए से जीवे हर हर नाम अवखद मुख पाया। गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ। काची मटकी बिनस बनासा जिस छूटे त्रिकुटी किस निज घर वासा। ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला तरन पड़े तिस लगे ना काला। प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया। जियो पिंड सब हर का माल नानक गुरमिल भये निहाल। आसा महला पंजवा पुत्री तेरी बिद कर थाटी जान सत कर हुई।

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी रैण पई तब अंत ना जानी पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी जन नानक को हर दर्श दिखाया आत्म चीन परम सुख पाया।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर किरपा हर प्रगति आया। मिल सतगुर धन पूरा पाया ऐसा हर धन संची है भाई। पाए न जल जल नहीं डूबे संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ। तोट न आवे नखुट न जाए खाए खर्च मन रहया अगाए। सो सच साह जिस घर हर धन संचाना इस धन ते सब जग वरसाना। इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना जन नानक अंतवार नाम गहना। आसा महला पंजवां जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी।

त्यों कर प्रतपाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार।

प्रभ अवनासी घट घट चीन आसा महला पंजवां आनंद बनोद भरे पुर धारिया अपना कारज आप सुआरिया पूर समगरी पूरे ठाकुर की।

0: गाँव रहाओ।
1: तृप्त अगावन साक्य नाय, अठसठ मज्जन संत तुराय, सब मैं जानू करता एक, साध संगत मिल बुद्ध विवेक, दास सगल का छोड़ अभमान, नानक को गुर दीनो दान। आसा महला पंजवां, बुद्ध परगास भई मत पूरी, तांते बिनसी दुरमत दूरी, ऐसी गुरमत पाई अले, बूढ़त कोर अंधकूप में।

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा, आन रसा सब हो शेरे रहाऊ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले ना किहे, जिसे प्राप्त तिस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साद। ईत ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह। ता प्रीतम होवह मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

ही ब्योहारा भाग्यामान भगत हुए तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा दोपदे पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मेण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे किते ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाऊ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावै नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाऊ सुख पाए दुख बिन सिया थाऊ ताप गया बचन गुरपूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाऊ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावह किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

आए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। खासा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारे। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दर्ब हस्ती अर कोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह काम ना आवे छोड़ चले अब मानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा।

एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बहु करता करने हार ना जाने अपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया नांगो जासी।

0: कर डूबे खप खप मोए गवारा।
1: गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा।
2: राग आसा घर पंजवां महला पंजवां,

जन्म जन्म की मल धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाउ, माया की किरत छोड़ गवाई, भगती सार ना जाने, वेद शास्त्र को

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

सुनावे कर संग साधु चरण पखारे संत धूर तन लावे मन तन अर्प धरे गुरे आगे सत पदार्थ पावे जो जो सुने पेखे लाए श्रद्धा तां का जन्म मरण दुख भागे।

ब्राह्मणी सुदीते श्रेष्ठाई रे पाताली आकाशी सखनी लहबर बूजी खाई रे घर की बिलाई अवर सखाई।

मन की होर किस पै आख सुनाइए बिन नावे सब जग बोराया नाम मिले सुख पाइए।

ते मुक्त भय अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काड लिए निरपव भय सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। चुका ने हो रहा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव। निकट आन प्रिय सेज धरी, कान कड़न ते छूट परी। मंदर मेरा शब्द उजारा, आनंद बनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं फिर घर आया,

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया, सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहा मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्बानी, आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पत्यान जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

कोई, सगल श्रेष्ठ अवां के चरण मल धोई। जो प्राणी काहू न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिय नाम। साध संग मन

नैन निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगी हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा।

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिन

खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, भुगत सियानप किशु ना जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोय, करन करावन हार प्रभ सोए, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप

मुख हर हर बोले, सो जन इत उत कतह ना डोले, कहो नानक जो राचे नाई, हर माला ता कै संग जाई, आसा महला पंजवा, जिसका सब किस तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जो किछ करै सोई पा।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरते संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नान

जानी पोर पया बहोर पछतानी प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी प्रभ मिलबे की लालसा ताते आलस कहां करोरी रहाओ कर्म है अमृत आनन सारेउ खिसर गयो भूम पर डारेउ साध मोहे लादी अहंकारे दोष नाही प्रभ करने हारे साध संग मिटे परम अंधारे।

अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई, सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत, कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाव, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया, काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया, सो थान मूड निश्चल।

उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरै, ओस बिना को मुख नहीं जोरै। ते बैरागी कहां समाए, तिस बिन तुही दोहेरी री रहाव। उनकै संग तू ग्रह महिमा हर, उनकै संग तू होई है जाहर। उनकै संग तू रखी पपोल, ओस बिना तू छुटकी रोल। उनकै संग तेरा मान महत, उनकै संग तुम साक जगत। उनकै संग तेरी सब बिद थाटी, ओस बिना तू होई है माटी। ओह बैरागी मरै ना जाए, हुक्मे बादा कार कमाए।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवा प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार।

खंबाह निकसया फूक ता हुए गयो सुवाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत अरतियां मोहे

जिस खसम दयाल आसा मोहल्ला पंजवा इन स्यों प्रीत करी कान्हेरी जो मिली तो वदे वधेरी गल चमड़ी जो छोड़े नाही लाग छुट्टो सत।

आठ काट ग्रह बन बन जो है, मन तन लागे होए कै मीठी, गुर प्रसाद में खोटी डीठी, अगरक उसके वडे ठगाऊ, छोड़ह नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन भया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवां, आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जा कै केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जा कै एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

सगल धर्म हर के गुण गाम, महा पवित्र साधका संग, जिस भेट त लागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कहन ना जावे रहाउ, वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापनीत जांका निर्मल थान, साध संगत जांका हर हर नाम, प्रगटेउ सो जन सगले भवन, पतत पनीत ताकी पागरेन, जांको भेटेउ हर हर राई, ताकी गत मित कथन

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे तां कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा दुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्व मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पाने, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जिवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै

सुख सहज मेरा धन सुहागा। कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा। आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर। बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर। ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया। हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ, पाए ठगौली सब जग जोहया। ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पनह चरना, तट तीरथ भवे सब तरना। से उबरे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही महा भिख्या मह दिन रैन जाहि कहो नानक प्रभ सिमरहो एक गत पाइय गुरपुरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कलमल दुख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे अपद्र है मन ते बैर गुरपुरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वस गत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक तिसी ऊपर कुर्बान आसा मोहल्ला पंजवा गावले हे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जां की सेवा सर्व सुख पाव है अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है सदा आनंद आनंदी साहिब गुण निधान नित नित जापी है बलिहारी तिस संत प्यारी जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है रहाओ जां का दान नुखूटे नाही पली भांत सब सहज समाही जां की बख्श न मेटे कोई मन वासाई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जां कै पूरन प्रभ के सेवक दुख ना चूरन ओट गही निरभउ पद पाइय सास सास सो गुण निद गाई है दूर ना होई कतहू जाई है नदर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुर पास नानक मंगे हर धन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सगल को हुआ सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल तिस सतगुर को जाओ गुरपुरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बनासे सतगुर की शरणाई रहाओ गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी

गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहिब कै मन भावै वदी वेल बहु पीढ़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु।

जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान न माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अन टेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुरपूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपां कितै काम न आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्याव हो सद सदा हर हर मन रंगे।

पंजवां लाख भगत आराध है जपते पियो पियो कमन जुगत मलावो निर्गुण बिखई जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहु नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाउ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर हुए रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

ठाकर तू ही प्रभ ता केवड़ भागा ओहो सहेला सद सुखी सब भ्रम पौ भागा हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल बिद सो सतगुरु हमारा रहाओ दूजा नाही और को तांका पहो करिये गुर सेवा महल पाईये जग दुत्तर तरिये दृष्ट तेरी सुख पाईये मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल पये सेवक से परवाना अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे बजहो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे आसा महला पंजवा जां प्रभ की हो चेरुली सो सब ते ऊंचा सब किस तां का कांडी है थोरा अर मूचा जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ वे परवाहो आनंद।

कहू लो जो मन के भरमा भ्रम काटे गुरे अपने पाए विश्रामा ओए बिखादी दुखिया ए गुरते हुटे हम छूटे अब उनाते ओए हम ते छूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न बूझता तब ही लो दुखिया गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया ना को दुश्मन दोखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसम बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद घना हर कीर्तन गाओ ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने सद सद बल जाओ गुरु विटो हों वारिया जिस मिल सच सुआओ रहाओ सगुन अप सगुन तिस को लगे है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ भावे पुन दान जप तप जेते सब ऊपर नाम।

एक दतार सगल है जाचक, दूसर कै पह जावो, हों मांगो आनल जावो, सगल शत्रपत एको ठाकुर, कौन समसर लावो रहाओ, उठो बैसो रह पीना साको, दर्शन खोज खजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलपावो, अगम अगम अगाध बोध, कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सत पुरख की, सत गुर पुरख त्यावो, पयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर, काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पायो, तो फिर जन्म ना

दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ानी दिन दोए चार पुराहा पीत उपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवां अपुष्ट बात ते भई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासेउ मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद भई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि कृपण को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल त्रिशन बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवां रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन्ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा, दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद्या गै जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

मैं रहाउ। तिस सेवक कह हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया, तिस नानक परसन आवे। आसा घर ग्यारवां महला पंजवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद, जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर, सुख नाही परवेसारी, साजन संत हमारे मीता, बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई, एहो जन्म पदार

गाखरी गुर शब्दी पार उतरी है रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन माणिक पथियाना रे आसा महला पंजवां दुपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना कि

मोहल्ला पंजवां हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियानपा भज पार ब्रह्म निरंकार एक साचे

भौजल लंघी है सदा हर गुण गाओ जन्म मरण निवारी है दुख ना जम पुर होए नाम निदान सोई पाए कृपा करे प्रभ सोए एक टेक आधार एको एक का मन जोर नानक जपिया मिल साध संगत हर बिन अवर ना होर आसा महला पंजवा जियो मन तन प्राण प्रभ के दिए सब रस भोग दीन बंदप जी दाता सरन राखण जोग मेरे मन त्याए हर हर नाम हलत पलत सहाए संगे एक स्यों लिवलाओ रहाओ वेद शास्त्र जन

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मजन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़मते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से परगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

सोहिना, कारण करना तारण धरना, एकै एकै सोहिना, संतन परसन बलिहारी दर्शन, नानक सुख सुख सोहिना, आसा महला पंजवा, हर हर नाम अमोला, ओह सहज सुहेला रहाओ, संग सहाई छोड़ ना जाई, ओह अगह अतोला, प्रीतम भाई बाप मोरो माई, भगतन का ओला, अलख लखाया गुरते पाया, नानक इहो हर का चोला, आसा महला पंजवा, अपनी भगत नवाहे, ठाकुर आयो आहे रहाओ, नाम पदार्थ होए सकारथ, हृदय चरण बसाहे, एहे मुक्ता एहे जुगता, राखो हो संत संगाहे, नाम त्यागो हो सहज समावो, नानक हर गुण गाहे, आसा महला पंजवा, ठाकुर चरण सुहावे, हर संतन पावे रहाओ, आप गवाया सेव कमाया, गुण रस रस गावे, एक है आसा दर्श प्यासा, आन ना पावे, दया तुहारी क्या जंत विचारी, नानक बल बल जावे, आसा महला पंजवा, एक सिमर मन माही रहाओ, नाम त्याव हो हृदय बसाव हो,

पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवां हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावे सर्ब फल पावे सो जन सुखिया हुआ राज कहावे।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवा घर पंद्रवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोई काम ना करिया।

नाई साध संत मनाई प्रिय पाई गुण गाई पंच नाद तूर बजाई रहाओ कृपा पाई सहजाई दरसाई अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाई गुर ज्ञान मन दृढ़ाई रहसाई नहीं आए सहजाई मन निदान पाई।

प्रभ त्याव भ्रम पीत जीत मटाव निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

बिनस ना जाए मरहा गुर ते जानिया हा नानक मन मानिया मेरे मना। असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तरसा जी गगन आकाश, जिन सब थापी।

है दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपुरा गुरमान।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी।

राग सुनाए कहावह बीते, बिन नावै मन झूठ अनीते, कहां चलो हो मन रहो हो करे, गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते, खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ, काम क्रोध मन मोह शरीरा, लभ लोभ अहंकार सो पीरा, राम नाम बिन क्यों मन तीरा, अंतर नामन साच पछाणे, अंतर की गत गुरमुख जाने, साच शब्द बिन महल ना पछाणे, निरंकार मह आकार समावे, अकल कला सच साच टिकावे, सो नर गर्भ जोन नहीं आवे, जहां नाम मिले तह जाऊ, गुर प्रसादी कर्म कमाऊ, नामे राता हर गुण गाऊ, गुर सेवा ते आप पछाता, अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता, आसा महला पहला, मन मैगल साकत देवाना, बन खंड माया मोहे हैराना, इत उत जाहे काल के चापे, गुरमुख खोज लह घर आपे, बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा, सिमरहो राम नाम अत निर्मल, अवर त्याग हो हौमै कौरा, रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी, बिन समझे जम का दुख सहसी, आपे बख्शे सतगुर मेले, काल कंटक मारे सच पेले, इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा, इहो मन पंच तत ते जन्मा, साकत लोभी इहो मन मूड़ा, गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा, गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख त्रे भवन सोजी होई, इहो मन जोगी भोगी तप तापै, गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै, मन बैरागी होमै त्यागी, घट घट मनसा दुबदा लागी, राम रसायन गुरमुख चाखै, दर कर महली।

सखाई अहलस निर्मल हर लिवलाई राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख सम कर नाम ना छोड़ आपे बख्श मलावन हारा रहाऊ कनक कामनी हेत गवारा।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जां की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: दुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सुपान तंबोली हरमा हो या शाई माई इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी खो

चारे वणज करहो मकसूद लैहो मत पछो तावहो अवगण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत्परावहो धर्म भूम सत बीज कर ऐसी किरस कमावहो ता व्यापारी जानियो लाहा लै जावहो कर्म होवै सतगुर मिलै।

साचो साहिब मन वसे हों मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

सच ना पाया, क्या भविए क्या ढूंढिए, गुर शब्द दिखाया, ममता मोह विसर्जिया, अपने घर आया रहाऊ, सच मिले सच्चाई।

हूँ। हुक्मी वजह लिखाए आया जानिए लाहा पल्ले पाए हुक्म सियाणी है। हुक्मी पैंदा जाए दरगाह पानी है।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मरै परमाई है हर नाम ना लेवै ताकी कीमत ना पवै बिन गुर की सेवै जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आखी है वेखै वडियाई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानी है अंतर है सोई

ठान ले, नित नित खरा संभाली है, सच सौदा पाई है, खोटे नदर ना आवनी, ले अगन जलाई है, जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई, एको अमृत बिरख है, फल अमृत होई, अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई, तिन्ना भरम ना भेद है, हर रसन रसाई, हुक्म संजोगी।

कराई, आपे गुरमुख नाम वसाई, आप पलावै आप मार्ग पाई, सच्चा शब्द सच समाई, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावै सब फिरै बहु राणी, तीन भवन मह एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दृढ़ाया, बहु कर्म कमावै दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा शब्द।

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई है वड्डी वड्याई, एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझे विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजे, दुख कदे ना होई, गुरमुख हउमै मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, माती उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर तां मिले, जान नदर करे, किलविक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया, दे नामे लाई, नानक नाम निधान मन वसिया, वडियाई पाई, आसा महला तीजा, सुन मन मन वसाई तू, आपे आए मिले मेरे भाई, अन दिन सच्ची भगत कर, सच्चे चित लाई, एको नाम त्याए तू, सुख पावे है मेरे भाई, हउमै दूजा दूर कर, वड्डी वडियाई रहाउ, इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे, विण सतगुर पाई ना जाए, पंडित पढ़ दे ज्योत की, तिन बूझ ना पाए, आपे थै सब रखियोन, किस कहन ना जाई, आपे दे सो पाई है, गुर बूझ बुझाई, जी जंत सब तिस दे, सब ना का सोई, मंदा किसनो आखी है, जे दूजा होई, इको हुक्म वर्तदा, एका सिर कारा, आप पवाली दितियन, अंतर लोभ वकारा, एक आपे गुरमुख कीतियन, बूझन विचारा, भगत पियो नानो बख्शियन, अंतर भंडारा, ज्ञानिया नो सब सच है, सच सोजी होई, कोय भलाए किसे दे ना भुलनी, सच जानन सोई, कर्म है पंच वर्त दे, पंचे विचारी, नानक बिन सतगुरु

बाहर किशना ही गुर प्रसादी पाई है, अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई। अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ, हर का गाहक हो है सो लए पाए रतन विचारा। अंदर खोले दिव दिष्ट देख मुक्त भंडारा, अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा। मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा, पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई। नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई, बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई। भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई, घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई। चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई, जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई। अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई, आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई। नानक

नामे ही सुख उपजै, नामे सरनाई, बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पथ गुआई, जमपुर बद्दे मारिय है, बिरथा जन्म गुआई, नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई, नाम हो ही नाम मनिए, नामे वडियाई, जिसनो देवै तिस मिले, गुरमती नाम बुझाई, नानक सब किस नाम

नानिवह दूजा भाऊ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वस आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावह फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब रहाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिनना वै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन शब्द हौ ना जाय नानक नाम रते तिन हौ मैं।

बताए, नदर करी जिस आपनी तिस नो भाव नी लाए। सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुंची है कथ कहने अंत ना पाए। गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

कर गए पल्ले किस ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिव लाए नानक जे सुख लोड़ है कामणी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाउ मन मुख सदा दुहागणी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिरका स्वाद ना आयु जो तुर लिखिया सो कमाहे गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागणी भै भगत शिंगार अन दिन रावे फिर अपना सच रखे उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना विटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवे हों मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागणी केवल एक मरार सबे गुनाह बख्शाए लयन मेले मेलन हार नान

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह फेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाए शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सच रह सच्चे सच समाहे बिन शब्द सुनिए ना देखिए जग बोला अन्ना परमाए बिन नावे दुख पाए सी नाम मिले तिसे रजाए जिन बाणी स्यों चित लाया से जन निर्मल परवान नानक नाम तिन्ना कदे ना विसरे से दर सच्चे जान। आसा महला तीजा शब्दों ही भगत जाप दे जिनकी बाणी सच्ची होए विचों आप गया नाउ मन्या सच मलावा होए हर हर नाम जन की पत होए सफल तिन्ना का जन्म है तिन माने सब कोई रहाउ हऊ मैं मेरा जात है अत क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा नाम नवे निध पाया परे अखुट भंडारा आवह इस राशि के वापारिये जिन्ना नाम प्यारा गुरमुख होवे सो धन पाए तिन्ना अंतर शब्द विचारा भगती सार ना जाननी मनमुख अहंकारी तुरों आप खुआयन जुए बाजी हारी बिन प्यारे भगत ना होवे ना सुख होए शरीर प्रेम पदार्थ पाईए गुर भगती मन धीर जिसनु भगत कराए सो करे गुर शब्द विचार हृदय को नाम वसे हम मैं दुबदा मार भगतां की जात पात एको नाम।

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली।

शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार बिन नामे सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार पन दिन सदा जलदियां फिरहे सेजे रवे ना पतार सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाने मुख उजली तित सच्चे दरबार आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुरु।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, वखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव। असावरी महला पंजवां घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस बिनस जाही खिन माहे, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाए, सब जग चल तो पेखी निश्चल हर को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निश्चल पावह ठाव, मीत साजन।

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो भला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे सतगुर चरनी पाए जो जन राते राम स्यो प्यारे अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी।

सत्य सोए श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहै तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रहै बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रहै चचै चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चै छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजै जान मंगत जन जाचै लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजै चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखै हुक्म चलाए।

आ सब थाई एक वस्या मन माही तत्ते तंच करहू क्या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे दंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सरे वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यो तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चलाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाई करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारू पवजल हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्थे थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया कर्मी कर्मी हुक्म पया नन्ने ना हां भोग नित भोगे ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैने कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखे बूझे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहया फप्पे फाही सब जग फासा जम के संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बे पाल है से फल पावे गुर प्रसादी जिन को पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरु पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आख गुरमुख बूझे गुरमुख एको जाने रारे राव रहिया सब अंतर जेते किए जनता जंत अपाई तंदे सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लिया लल्ले लाए तंदे जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाने तां कै हुक्म पया ववे वास देओ परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर राव रहया राड़े राड़ करहे क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहे होर ना कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्याग हो हर नाम समाव हो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़ आप करे जिन छोड़ी जो किस करना सो कर रहया करे कराए सब किस जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने पढ़ अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया।

दारूम पया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया ककै काम क्रोध परमयो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जले हो मूड़े तत्तै थान पृष्ठ हुआ कग्गै कर कर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खवायो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद वी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाहे पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किनै ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुर मुक्त ना हुई हरारै राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को

आदि पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

जायु। साचा सिरजन हार जियो, सबना का दाता कर्म विधाता। दुख बसारन हार जियो, दुख बसारन हार स्वामी। कीता जाका होवै कोट कुटंतर पापा केरे, एक करी मह खोवै। हंस से हंसा बग से बग्गा, घट घट करे बीचार जियो। तू सबनी ताई जितै हों जाई, साचा सिरजनहार जियो। जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो। तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै, कबहू ना आवै हार जियो। ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है, तिन जम नेड़ ना आवै। जमन मरन तिना का चूका, जो हर लागे पावै। गुरमत हर रस हर फल पाया, हर हर नाम उर तार जियो। जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया, ते विरले संसार जियो। जिन जगत अपाया तंदै लाया, सै विटोह कुर्बान जियो। ता की सेव करी जै लाहा लीजै, हर दरगाह पाइय मान जियो। हर दरगाह मान सोई जन पावै, जो नर एक पछाणै। ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै, नित हर गुण आख बखाणै। अहनस नाम तिसै का लीजै, हर उत्तम पुरख प्रधान जियो। जिन जगत अपाया तंदै लाया, हों तिसै बिटहो कुर्बान जियो। नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै, मन है से जिन जाहि जियो। इन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै, जे जुग केते जाहि जियो। जे जुग केते जाहि स्वामी, तिन फल तोट ना आवै। तिन जरा ना मरना नरक ना परना, जो हर नाम त्यावै। हर हर करहै से सूकह नाही, नानक पीर ना खाहे जियो। नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

तू बैराग कर किस दिखावह, हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावह। कर बैराग तू छोड़ पाखंड, सो सहो सब किस जाने, जल थल महियल एको सोई, गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाने।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंध लागे, गुरमुख

तावत थम्या निज कर वस्या आई नाम विहाजे नाम लई नाम रहे समाई तावत थम्या सतगुर मिले दसवां द्वार पाया तिथे अमृत भोजन सहज धुन उपजे जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहे आसमाई यूं कह नानक सतगुर मिले है तावत थम्या निज

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

मन मुख मुग्ध चेत है नाही अगे गया पछतावे। यूं कह नानक मन तू गर्ब अटिया गर्ब लदया जावे। मन तू मत मान कर है जे हों किछ जानदा गुरमुख ने माणा हो। अंतर अज्ञान हों बुद्ध है सच शब्द मल खो हो। नमाणा सतगुरु अगे मत किसे आप लखावे। अपने अहंकार जगत जलिया मत तू अपना आप गवावे। सतगुर कै भाणे करह कार सतगुर कै भाणे लाग रहो। यूं कह नानक आप छड़।

महा आनंद सहज भया, मन तन सुख पाया, सो सहो चित आया मन वसाया, अवगण सब वसारी, जां तिस भाणा गुण प्रगट होए, सतगुर आप सवारी, से जन प्रवान होए, जिन्नी एक नाम दिड़िया, दुतिया पाओ चुकाया, इयों कह नानक धन सो वेला, जित मैं सतगुर मिलिया, सो सहो चित आया, एक जंत परम पुले, तिन सह आप पलाए, दूजे पाए फिर हैं, हम मैं कर्म कमाए, तिन सह आप पलाए कुमार।

साए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजह नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यो रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यो चक कुम्हार पवाया दुख खावे हैं दुख संचह भोग हैं दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला।

राम निस्तारी, रामो राम नाम जपया, दुख किल विखनास गवाया राम, गुर परचह त्याया,

गवाई। मन तन सीतल शिंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा। नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा। जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम। किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम। माया मल लागी मूड पय अपागी, जिन राम नाम नह पाया। अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया। महा बिखम जम पंथ दुहेला, कालू खत मोह अंधियारा। नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा। रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम। एहु मनुआ खिन ऊब पयाली, परमदा इकत कर आणै राम। मन इकत कर आणै।

रम ऊचा गुण कहत्या अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई दुर्मत कबुद गई।

भनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपियै सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अराध्या जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपी है सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया।

हर गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधु,

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए दियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जोग द्वार

संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते।

आपन काया मत जम पकड़ ले जाए जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो हर सोभा पाई हर नाम वडियाई हर दरगाह पैंदे जान जियो हर दरगाह पैंदे।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरन ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नावै अवर ना कोए जियो, जग उपजै बिन सै बिन सबनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आदि निरंजन निरंकार जियो, ताकि गत कही ना जाई अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप नरेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहै दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुदे आपे भावै तिवें चलावहें सब तेरे शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरे शब्द वडियाई। गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ शब्दे रहिया समाई। तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ

मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

वाहिगुर हर मार्ग चाली मेरा मन तन नाम आधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली गुरमुख प्यारे।

रस पिन्नी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मन्नी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजे जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडार।

नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है, हर भगत हर लीजै। आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाने राम राजी, जे बाहर हो।

मेरा सतगुरु सोथान सुहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुरसिखा की काल पाए पाई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पू

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइयां, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी।

करे, हर गुरु मलावो मेरे प्यारे, घर वसै हरे रंग रलिया माण मेरे प्यारे, हर कृपा करे गुरु नानक तुठा मेरे प्यारे, मेले हरे मैं प्रेम ना चाखिया मेरे प्यारे, भाउ करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे, नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर धारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन सी

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर कुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देखसा हर दातड़े मेल गुरु मुख

सब किस मैं सब किस पाया, नाम त्याई राम, नाम त्याई सदा सखाई, सहज सुपाई गोविंदा, गणत मटाई चूकी ताई, कदे ना व्यापै मन चिंदा, गोविंद गाजे अनहद वाजे, अचरज सोब बनाई, कहो नानक फिर मेरे संगे, ता मैं नव निध पाई, सरस अड़े मेरे भाई सब मीता राम, बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम, गुरमिल जीता हर हर कीता, टूटी पीता भरम गड़ा, पाया खजाना बहुत नदाना, साणथ मेरी आप खड़ा, सोई सुगयाना सो परदाना, जो प्रभ

अकथा हर अकथ कथा किस जाए न जानी राम। सुर नर सुर नर मुन जन सहज वखाणी राम। सहजे वखाणी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया। जप एक अलख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया।

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पहु भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख कृपा तारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइय मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा। आसा संत महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण कमल मन बेदया किशियान न मीठा राम राजे। मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजे। हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे। गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे। प्रियो सह

मीठा ज्यो राती जल माछुली त्यो राम रस माते राम राजी गुर पूरे अपदेसिया जीवन गत पहाते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी।

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अधारा राम राजे मालक जीना सो।

हर प्यारा मिले नारायण अपने मानोरथ पूरा राम राजे ताटी पीत परम की भेटत गुर सूरा राम राजे पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए सब निद दीन दयाला आद माध अंत प्रभ सोई सुंदर गुर गोपाला सुख सहज आनंद कनेरे

मन हर चरण गिहिजै, ऐसी मन प्रीत कीजै। आसा महला पंजवां सलोक, बन बन फिरती खोजती, हारी बहु अवगाहि। नानक पेटे साध जब, हर पाया मन माहि। संत जां को खोजह असंख मुनि, अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी। जाप जपे, जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना, कर गवन बसदा, तीर्थ है मज्जन, मिलन को निरंजना। मानुख बन तिन पशु पंखी, सगल तुझ है आराधते, दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार, संकर जटा तार, चाह है तुझ दयार, मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर, सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह, जख किन्नर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा, जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक, साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेवह, लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है, पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्यावह, वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी, सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद, खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल, नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर, सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता, नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया, ताकी उपमा कित गनी। एहो दान मान नानक पाए, सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो, सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे, दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई, भेटत साधु संग जमपुर नह जाइए। दुख दर्द ना पौ ब्यापे, नाम सिमरत सद सुखी, सास सास अराध हर हर, त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध, कर दया सेवा लाइए। नानक पयम पै चरण जंपै, नाम जपत गोबिंद नह अलसाइए। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल तल मही अल पूरिया, एक निमख जा कैर दैवसिया। मिटे तिसै वसूरिया, अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयम पै चरण जंपै, पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरी, सागर संसार पाव उतार। नाम सिमरत बहुतरी, आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयम पै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

सहज सुभाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत

आवे अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर्वणा मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण भी जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

होए अंते मिले गोपाल चंत मिलो संपन कह संग मोहे उधार ले हो बिनो करो कर जोड़ हर हर नाम देहो हर नाम मांगो चरण लागो मान त्यागो तुम दया कतहू ना तामो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया समर्थ अगत अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार ले हो अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सठ कठोर कोलहीन व्यापत मोह कीच मल परम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसे जोबन बदे जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत नानक।

आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपो भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरम लाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रही अगन सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन सिमरंत नानक हर हरे।

गोविंद रमण निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत संत। इन्नी रहनड़ी है चाम कन तारी, जाग है संत जना मेरे राम प्यारे। राम प्यारे सदा जाग है, नाम सिमर है अन दिनो, चरण कमल ध्यान हिरदय, प्रभ बिसर नाही एक खिनो। ताज मान मोह बिकार मन का, कलमला दुख जारी, बिनवंत नानक सदा जाग है, हर दास संत प्यारी। मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया, मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया, प्रभ मिले स्वामी सुखगामी, चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे, प्राण मन तन सब हरे। मन इच पाई प्रभ ते आई, संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री तार, सगल आनंद रस बनिया। मिल सखियां पुछ है कहो कंत नीचाणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी, गुण गूढ़ गुप्त अपार करते, निगम अंत ना पावहे, भगत पाए त्याए स्वामी, सदा हर गुण गावहे। सगल गुण सुगयान पूरन, अपने प्रभ पाणी, बिनवंत नानक रंग राती, प्रेम सहज समाणी। सुख सोहिलड़े हर गावन लागे, साजन सरसियड़े दुख दुश्मन भागे, सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते, प्रभ आप कृपा धारिया, हर चरण लागे सदा जागे, मिले प्रभ बनवारिया। शुभ दिवस आए सहज पाए, सगल निद प्रभ पागे, बिनवंत नानक शरण स्वामी, सदा हर जन तागे। हासा महला पंजवा, उठवाज बटाउड़िया, तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया, कित कूड़ लुभाया, कूड़े लुभाया तो माया, करहें पाप अमित्या, तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया, माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया, हाथ हो मिर्ग जिवै, पेख रहन चंद्रायन, सुख हो दुख भये, नित पाप कमायन, पापा कमाणे छड्डह नाही, लै चले कत गलाविया, हर चंदौरी देख मूठा, कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता, गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे, नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला पया खिन मह, खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही, किया अपना पायु, गुजा कमाणा प्रगट होवा, ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा, मन मुखो अहंकारी। हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना, आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ, आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनुग्रहो राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायण, विनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायण, निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, करतार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापै, हम्यों हर रस चाखिया, साज संगे नाम रंगे,

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किस दे रहे।

देव मुन जन भगत नाम आधारा बिनवंत नानक सदा भजिए प्रभ एक करने हारा खोट ना कीचई प्रभ परखण हारा कूड़ कपट कमाम दड़े जन्मह संसारा संसार सागर तिन्नी तरिया जिन्नी एक ते आया ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरणाई आया जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही भाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक।

पाद कमला प्रम पीत कमला प्रम पीत हे तीखन मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करहो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास, चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे।

उगवह सूरज चढ़े हजार केते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान्या।

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगै करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्तै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झाटै पाए।

कोलू चरखा चक्की चक, थल वारोले बहुत अनंत, लाटू मादानिया अनगाह, पंखी पौंदिया लैन ना साह, सूए चाड़ पवाई है जंत, नानक पौंदिया गणतना अंत, बंधन बंद पवाए सोए, पै किरत नचै सब कोए, नच नच हसह चलह से रोए, उड ना जाही सिद्ध ना होहे, नचन कुदन मन का चाऊ, नानक जिन मन पाओ, किन्ना मन पाओ पौड़ी, नाओ तेरा निरंकार है, नाए लय नरक ना जाई है, जियो पिंड सब तिसदा, देखा जय आख गो।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

गया हों विच जमया हों विच मुआ हों विच दिता हों विच लया हों विच खटिया हों विच गया हों विच सचियार।

तहों उपजे कित संजम एह जाय हमें एहो हुक्म है पय किरत फराहे हमें दीर्घ रोग है।

नानक कह सुनहु जनहु इत संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखी जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया, सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

कप्पड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खाप होए खार, कूड़ कूड़ ने हो लगा विसरिया करतार, किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलन हार, कूड़ मिठा कूड़ माखियों

मल उतरे तन करे हच्छा तूए सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

निवास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लाल च छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूरब लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुती हूं रुत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भग

नच है वाजे वाव है रूप कर है श्रृंगार ऊंचे कूक है वादा गाव है जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

की लेख पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

ना होई। बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाऊ। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवाल्यो।

दूजा योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है, सोई निरंजन देव महला दूजा।

होवै गुनहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाहु त्रेत रथ जतै का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

अच्छा साच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर नाए लय परास्त जाहे नानक तौ मुख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग किया कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लोह भया नील बस्त

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया ने।

मुख सूत जत गंढी सत वट एहो जने जी का है ता पांडे घत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन सो मान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोवा ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल तग

फिर पाइय होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे बत्तै वट तागे अवरा कत्तै ले पहाड़ करे वे आहो।

कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी। हुक्म मने हुए प्रवान, ता खसमै का महल पाए सी। खसमै भावे सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी। ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरण ना जाई। धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेच्छा खाई। अंतर पूजा पढ़ै कतेबा, संजम तुरका भाई।

ताग तिनकर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मत्थे टिका तेड़ तो तीक खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर हो वह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिट वे मत पिट एह अन्न असाडा फिट तन फिट फेर करेन मन जूठ चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच हो सच पाई है पौड़ी।

वडोहो वड्डा वड मेजनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गै वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गै सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझन नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया

आज ना कोई पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवैर सोई नानक सूतक एव ना उतर है, ज्ञान उतारे तोय महला पहला, मन का सूतक लोभ है, जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना, पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै, लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे, महला पहला सभो सूतक भरम है।

कह तारी है, देख है कीता अपना, तर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी है, जिसके जी प्राण है, क्यों साहिब मनु विसारी है, अपना

आई नानक आशिक कांडिया सद ही रह समाय चंगा चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए आशिक इहो ना आखिए जे लिखै वरतै सोए महला दूजा सलाम जवाब दोवै करे मुंडहों कुथा जाए नानक दोवै कूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित सेवै सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचे ही दे लम्मी नदर निहाली है ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किश लाहे उपर काली है श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्ला करे कड़ेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा।

खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजह गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

ਹੈ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਉਪਾਇਕ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਕਿਸਨੋ ਕਹੀਐ ਨਾਨਕਾ।

कियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लावहु।

माया पास बंद नहीं पारे, हर मन सुन ना लूके, आपा पद निर्वाण ना चीनिया, इन बिद अपियो ना चूके, कही ना उपजै उपजी जाने, भाव अभाव बिहूणा, उदय अस्त की मन बुद्ध नासी, तौ सदा सहज लिव लीना, ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है, उदक कुंभ बिगराना, कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा, तौ मन सुन समाना, आसा गज साडे तै तै धूतियां, तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां, लोटे हाथ निबग, वे हर के संत

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एक ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो।

काल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

आवे, घर घर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका पाओ लए हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना कहो कबीर जे कृपा धारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आई किन एह रहा चलाई दिल में सोच विचार कवा दे पिस्त दोजक किन पाई काजी कै कवन कते बखानी पढ़त गुनत ऐसे सब मारे किन्हों खबर ना जानी रहाओ सकत सुनेहो कर सुन्नत करिये मैं न बदौगा पाई जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा आपन ही कट जाई सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिये हरद शरीर ही नार ना छोड़े ता ते हिंदू ही रही है शाद कतेब राम भज बौरे जुल्म करत है पारी कबीर पकरी टेक राम की तुर्क रहे पचेहारी आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई रे बौरे तोहे करी ना राख कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ कां की मात पिता कहो कां को कमन पुरख की जोई ठट फूटे को बात ना पूछे काढ़ो होई देहरी बैठी माता रोए खटिया ले गए पाई लट छिटकाए तिरिया रोए हंस अकेला जाई कहत कबीर सुनो रे संतो तै सागर कै ताई इस बंदे सिर जुल्म होत है जम नहीं हटे गुसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बलोई इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे हो गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अप

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

सलाम, कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुरक दो समझावो, आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ, जिस पाहन को

काल पन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरध भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरम तह ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसै, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त श्री की। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेहे रावण कर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरम

पाओ। नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा। राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा। सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना। कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा, जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या।

अवतार चिरायु हो, कैसे खसम हमारे, तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सौ मोहर त्याना, आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमानंग, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदानं, बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाव, नैन देख पतंग उर्जै, पासना देखै आग, काल पासना मुग्ध चेतै, कनक कामन लाग, कर विचार विकार पर हर,

साज सब ठाका, राम नाम बस होई, अब मोहे लाचनो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाऊ, काम क्रोध माया ले जारी, तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी।

खबर ना करे दीन के बौरी ताते जन्म अलेख है रहाव साचक तेब बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

मेरो पेर हौ हर की बहुरिया राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ धन पेर एक है संग बसेरा सेज एक पै मिलन दुहेरा धन

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काढ़ गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

वह मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारे ओ बछरे बीठल पहला काहे करूं।

हर जन्म दैला गुर उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जानै संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया धन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुण आसा हर हर हर हर हर हर हरि हर सिमरत जन गए निस्तर।

दूध पियाया, तौ जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, इयो गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले, दौर्यो फिरत है रहाउ। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। मन बच क्रम रास कसै लुभाना, बिनस गया।

हीरा रविदास टवंता टोरनीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता मह गनिया एह बिद सुन कै जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वड भागा रे चेत चेतस की ना दयाल दमोदर बिबह ना जानस कोई जे तावह ब्रह्मांड खंड को करता करे सो होई रहाउ जननी केरे उदर उदक मह पिंड किया दास द्वारा दे आहार अगन मह राखे ऐसा खसम हमारा।

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहुम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घुम ना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाउ राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

होवै जीवन पदवी पाए रहाउ। गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया तां मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाई जे लोचै सब कोई कूड़े की पाल विचों निकले तां सदा सुख होए। नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगै जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे। गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ, हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागै, हर नाम मेरा मन तृप्तै, हर मेरा साक अंत होए सखाई, हर दिन होर रास कूड़ी है, चलदियां नाल ना जाई, हर मेरा धन मेरे साथ चालै, जहां हों जाऊं तहें जाई, सो झूठा जो झूठे लागै,

गुरे आपने सद बलिहार जाऊं, सतगुर मिले हर मन वसै सहजे रह समाई रहाऊ, जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई, बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाई, से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई, दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई, नानक गुर ते गुर होया

गुर प्रसादी राम मन वसै ता फल पावे कोई। अंतर गोविंद जिस लागे प्रीत हर तिस कदे ना विसरै हर हर करहै सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कै कपट।

आए जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राए तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हमें मारे, तां हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए, पारस होए ता पूज कराए, जो उस पूजे सो फल पाए, दिखिया देवे साच बुझाए, बिन पारस पूज ना हो वई, बिन मन परचे अवरां समझाए, गुरु सदाए अज्ञानी अंधा, किस ओहो मार्ग पाए, नानक बिन नदरी किछु ना पाईए, जिस नदर करे सो पाए, गुर प्रसादी दे वडियाई, अपना शब्द वरताए, गुजरी महला तीजा पंच पदे, ना कांसी मत उपजे, ना कांसी मत जाए, सतगुर मिले मत उपजे।

है ता भरम विचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाई हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाए जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मन

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरख।

ले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सा

भागी हीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहै, कौआ काग कौ अमृत रस पाईए, तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहै, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस होहै, नानक तन तन वड्डे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल धोहै, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सर

ता गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया बड़ भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मलाया।

था जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर सिंह चित लावे अमृत बचन सतगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपै लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया ते भागहीन मोए मर जावे आनंद मूल जग जीवन दाता सब जन को आनंद करो हर त्यावे तू दाता जी सब तेरे जन नानक गुरमुख बख्श मलावे एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुजरी महला चौथा घर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कौ संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर कै वस है शरीर रहाउ भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा बरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

अठसठ मज्जन कर इछनाना भ्रम आए धर सारी अनक सोच करह दिन राती बिन सतगुर अंधियारी धावत धावत सब जग धायो अब आए हर द्वारी दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला पंजवा हर तन जाप हर तन ताप हर तन भोजन पाया निमख न बिसरो मन ते हर हर साध संगत मह पाया माई खाते आयो घर पूता हर तन चलते हर तन बैसे हर तन जागत सूता रहाओ हर तन इशनान हर तन ज्ञान हर संग लाए ध्याना हर तन तुलहा हर तन बेड़ी।

आवे। हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक को दिया। एहो मन हर रंग रंगी गुजरी महला पंजवा। जिस सिमरत सब किल विखनास है पितरी होए उदारू। सो हर हर तुम सद ही जापहु जा का अंत न पारू। पूता माता की आसीस निमख न बिसरो तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। रहाओ सतगुरु तुम कहो होए दयाला संत संग तेरी प्रीत। कापड़ पत परमेश्वर राखी भोजन कीर्तन नीत। अमृत पीव हो सदा चिर जीव हो हर सिमरत आनंद अनंता। रंग तमाशा पूर्ण आसा कभे न व्यापै चिंता। पवर तुम्हारा इहो मन होवो हर चरना हो कौला। नानक दास उन संग

सो अपना दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ तिन्ही रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को धनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देव त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को गुजन हारु जान कमन पता शिव बरंच अर सगल मोन जन गहना सकाहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर विद।

यत्र कथा गुजरी महल्ला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कशु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहा तहा हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बार।

पंजवां मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिन की हैरत कछ ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखी परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

करी राजा रंक करै खिन पीतर नीचह जोत तरी त्याय अपनो सदा हरी सोच अंदेशा

तह भरम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्ब प्रतपालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही कहो प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, होर आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निस हर भोर।

ते ताई साध संगत को जोहि न साके मल मल धोए पाए अब मोहे आए परयो सरनाय गोहज पाप को बहुत परजारे मो को सतगुरु दियो है बताए रहाओ सिद्ध साधक अर जख किनर नर।

पंजवा आप जा समिटै हुआ जग कीरत दरगाह बैसन पाई है जम की त्रास नास हुए खिन मह सुख आनंद से ती घर जाइए जाते काल ना बिरथी जाइए आठ पहर सिमरहु प्रभ अपना मन तन सदा त्याय रहाओ मोहे सरन दीन दुख भंजन।

व्यवहार मिथ्या भज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर सरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरनी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटे सगल उपाद रहाउ मात पिता सुत मीत भाई इस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम सरन साधु निर्मला

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद।

पाहु पार ब्रह्म प्रभ दया धारी बख्शली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण योग मन तन बांछिए जन।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रमते पकार है कत है नाही चोट हर चरण सरन अपार प्रभ के दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवा घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रहो प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उधरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ सात शरण परेउ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे चित हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी

डाला। सर्वज्योत निरंजन शंभू छोटो बहुत जंजाला। सुन सिखवंते नानक बिनवै छोड़ो माया जाला। मन विचार एक लिव लागी पुनरप जन्म ना काला। सो गुरु सो सिख कतियले सो वैद जे जाने रोगी। तिस कारण काम ना धंदा नाही धंदे गिरी जोगी। काम क्रोध अहंकार तजियले लोभ मोह तिस माया। मन तत अवगत त्याया गुर प्रसादी पाया। ज्ञान ध्यान सब दात कथियले

तम जो है बूझे अंतर शब्द विचार। अब तब अवर ना मांगो हर पह नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

टकाई, जो तिस भावै सोई करसी, किरत ना मेटिया जाई। ऐ जी भाग परे गुर सरन तुम्हारी, मैं अवरना दूजी पहाई। अब तब एको एक पकारो, आद जगाद सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की, तुझे

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग बिसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्शना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

रविया गुरमत भ्रमण चुकाई पारस भेट कंचन धात हुई सत संगत की वड्याई हर जल निर्मल मन इशनानी मज्जन सतगुर पाई पुनरप जन्म नाही जन संगत ज्योति ज्योत मलाई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लब लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाई।

मनमुख भगत ना होई, सुर नर विरत पक करमी नाचे, मुन जन ज्ञान बीचारी, सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी, जी जंत सबे ही नाचे, नाच है खानी चारी, जो तुद भाव है से ही नाच है, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए, से भगत से तत् ज्ञानी, जिन को हुक्म मनाए, एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै,

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यो बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी। गुरमुख नाम अमृत जल पाई जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ। सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणे वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हो मैं छट बेकारी हर हर नाम त्याई है हर हर

वसियो मन आई त्रिक अवेहा जीविया क्या जुग मह पाया आय माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाय हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कुमलाय जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वसया मन आय हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाय नानक सतगुर सो।

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय किते ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है, जे चलदिया नाल ना।

आई, सतगुरु की सेवा ना कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई है, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरै, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदै लिवलाई, सलोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदै सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पाव है गुणी निदान, हर सुख दाता मन वसै, हऊ मैं जाए गुमान, नानक नदरी पाई है, तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता, अंदरों कपट वकार गया, मन सहजे जिता, तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, आनंद नहार के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मिता सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिवलाए,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।